आज है कि हम लोगों ने अभी बड़ी सुंदर बात श्रवण की, प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य जगत वंदनीय पूज्य चरण अखंडानंद महाराज जी के श्री मुख से एक एक सूत्र वाक्य जिसके हृदय में भगवान के चरित्र के विषय में प्रीति न हो वह हृदय हृदय नहीं पाषाण है, उसको हृदय नहीं कहना चाहिए, वो हृदय कमल नहीं बल्कि पाषाण है। और पाषाण जब चट्टाने टूटती हैं तब जाकर उसमें से झरना निकलती, ऐसे नहीं निकलती। तो आज यहाँ पर भी वही लीला है जो पूज्य पराशरी ने सूत्रपात किया। यदि आपका हृदय कमल है तब तो ठीक है, नहीं तो भगवान शंकर को तांडव लीला करनी पड़ती है। जब तांडव लीला करते हैं तो पाषाण भी चकनाचूर होकर के वहां से फिर झरना निकलती है। और तांडव शब्द बनता भी है तड़ी आघाते धातु से, तड़ी आघाते है क्योंकि यदि धातुओं को नूम हो जाता है और आगे वृद्धि होकर तांडव बनता है। इसके पूर्व में भगवान ने पहले नीलकंठ लीला बतलाया, इस नीलकंठ लीला के द्वारा अविद्या का अध्यारोप। इसके बाद में चौदहवें पंद्रहवें श्लोक में अविद्या का अध्यारोप के बाद में काम दहन लीला। जैसे संसार में जब कोई आता है तो आने के बाद अविद्या का आरोप होता है। ये प्रत्येक प्राणी के जीवन की घटना है। जब भी कोई जन्म लेता है तो वह निर्गुण निर्विशेष रूप से रहता है। दार्शनिक सिद्धांत भी है, उत्पन्नम क्षणम अगुणम निष्क्रियम तिष्ठति। और इस बात को न्यायिक नहीं बल्कि वेदांती मानते हैं कि प्रथम क्षण में सारे ज्ञान निर्गुण निष्क्रिय होते हैं, बाद में उसमें विशेषता आती है। जैसे कुछ देखेंगे तो यह कुछ है ऐसा होता है, पहले यह कुछ है, इसके बाद उसकी विशेषता मालूम पड़ती है कि यह घट है पट है या जो है स्वरूप है या कुरूप। विशेषता द्वितीय क्षण तृतीय क्षण में आती है। तो यहाँ पर भी जब कोई भी संसार में आता है तो निर्गुण निराकार निष्क्रिय, बात में अविद्या का आरोप कर दिया कि तुम यह हो वह हो, मनुष्यत्व का ब्राह्मणत्व का समाज का धर्म का तमाम आरोप करते हैं, यह अविद्या है। आरोप होने के बाद तदनुसार वह चेष्टा करता है। ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण के अनुसार, क्षत्रिय क्षत्रिय के अनुसार, यदि उसको कह दिया कि तुम इस्लाम हो तो उसके अनुसार चेष्टा होगी, क्रिया होगी, प्रवृत्ति होगी। जब उसमें परेशान होता है तब जाकर भगवान काम दहन करते हैं, कामना का नाश। उपनिषद में आता है, वेद व्यास भगवान स्वयं ही कहते हैं, तृष्णाक्षर सेते नारहता षोडशीम कला। एते तिष्णा, ये जो हमारे तिष्णाएं हैं कामनाएं, इनके क्षीण होने से अनंत सुख की अनुभूति होती है। इस संसार में इतना सुख है, उन सारे सुख को एक तरफ रख दो और तिष्णा क्षय को एक तरफ, वह पलरा भारी होगा। इतना सुख तिष्णा क्षय में है। उसी तृष्णा से जब प्राणी पीड़ित होते हैं तो भगवान शंकर ने काम का दहन यहाँ किया। अब काम दहन के बाद फिर आप क्या करते हैं लौकिक व्यवहारिक जगत में, जैसे किसी बच्चे की कामना है कि हमें साक्षर होना है, साक्षर होने के बाद वह अच्छे पद में प्रतिष्ठित हो गया, नौकरी लग गई, धन कमाने लग गया, इसके बाद आप कहते हैं कि अब मुझे इसकी शादी ब्याह कर देना चाहिए। शादी ब्याह के पूर्व आप नृत्य करते हैं ना, नाच गा,
ऐसे ही जब यहाँ काम दान लीला हो गई तो भगवान शंकर इस 16वें श्लोक में तांडव नृत्य करेंगे। इस शिव तत्व समष्टि चैतन्य का नाम है, व्यष्टि चैतन्य समष्टि चैतन्य, चैतन्य दो तरह का है। व्यष्टि मतलब कि जो प्रत्येक प्राणियों के अंदर अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है, उस अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम है व्यष्टि चैतन्य। और सारे अंतःकरणावच्छिन्न उपाधि में जो चेतन है, अंतःकरण की उपाधि में जो चैतन्य का प्रतिफलन है, उन सब का जो अधिष्ठान, जो सब में मैं कर रहा, उसका नाम है समष्टि चेतन। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य के शरीर में अनंत कृमियां हैं, परंतु उन सब का अहंकार एक आदमी करता है, मैं। किसी व्यक्ति का नाम श्यामलाल है, तो वह श्यामलाल अहंकार करता है कि मैं, और उसके शरीर में हजारों रक्त और श्वेत कृमियां हैं, आपस में उनका संघर्ष भी होता है। श्वेत कृमि रक्त कृमि का भक्षण करते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं, और रक्त कीटाणु बन जाए तो आदमी बीमार पड़ जाता है। उसमें भी जीव है, परंतु उससे हमको कोई लेन देन नहीं होता। जब बीमार पड़ते हैं तब ख्याल आता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा इंजेक्शन देता है कि श्वेत कृमि बढ़े। इसी प्रकार से यहां पर भी जितने भी चेतन है, सबका जो मैं करके अहंकार कर रहा, उसका नाम है समष्टि चैतन्य। तो जब प्राणियों की कामना तृष्णा क्षय हो गई, जैसे आपके लाडली का जब नौकरी लग गया, अब विवाह होने वाला होता है, तो आप जो है ना नाच गान सब तमाशा करते हैं, ऐसे भगवान शंकर अब तांडव नृत्य करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भी दशम स्कंद के 28वें अध्याय से लेकर जो 32 तक राजपंचाध्याय है, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण महाराज लीला तभी प्रारंभ किया जब कामदेव को जो है दूर किया। प्रसंग आता है ना कि जब कामदेव भगवान के यहां पधारा राज के पूर्व, भगवान ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं कामदेव हूं, जो देवताओं असुरों और मनुष्यों के इंद्रियों को मैं मंथन करता रहता। भगवान ने कहा कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? बोले कि मैं आया हूँ कि जरा आपसे भी एक बार कुछ सपना शास्त्रार्थ हो जाए। भगवान ने कहा शास्त्रार्थ हो जाए, परंतु शास्त्रार्थ हमेशा संबल में होता है, तो आप शास्त्रार्थ कैसे करोगे? मैदानी जंग सबके बीच में करोगे या जो है ना किले की लड़ाई, मतलब केवल हम और तुम दोनों ही होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा? कामदेव का देखो ये दो का शास्त्रार्थ तो मैं कर चुका हूँ भगवान शंकर से, तो वहां मैं हार गया हूँ, इसलिए अब ऐसी भूल तो मैं करता नहीं। ये दो रहेंगे तो एक प्रबल होगा तो उसको जला देगा, और मान लो मैदान में होगा तो कोई तो बीच बचाव करेगा, इसलिए अब मैदानी जंग होगा। भगवान ने कहा ठीक है, पर शास्त्रार्थ के पूर्व पहले परीक्षण होता है ये करने में समर्थ है कि नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा जरा मैं देखता हूं कि

तब जाकर महाराज हुआ। एक तो कामदेव को वहां से खदेड़ा और दूसरी लीला यह भी है कि ये जो काल बल नामक राक्षस है पुराण के अनुसार, उस काल बल को भी भगवान ने तांडव नृत्य जब महाराज हुआ तब तक उसको दबा के रखा। ये काल बल राक्षस का काम होता है कि प्राणियों को हमेशा काल से बांध के रखना। जैसे कि हम लोग बंबई में पैदा हुए, एक कोई संवत्सर होगा और 100 वर्ष के बाद हम खलास हो जाएंगे, ये सब काल बल करता है। और जब तक काल बल राक्षस अपना काम करता रहेगा तब तक महाराज होना असंभव है। जवानी में कितना आनंद होता है, इंद्रियों का तेज है, सब कुछ है, परंतु आपको पता भी नहीं चलता है बुढ़ापा तुरंत आ जाती है। ये काल बल के द्वारा बुढ़ापा आती है, आप नहीं चाहते बुढ़ापे को, आपको पता भी नहीं चलता है, पर कब कैसे आप 50 वर्ष के आगे बढ़ गए, वो सब काल बल करता है। तो वहां पर ही भगवान श्री कृष्ण ने काल बल को भी नियंत्रित करके रखा। इसलिए 28वें श्लोक में कहा, भगवान अपि ताह रात्रि, ये ता शब्द बहुवचन है, साते ताह जैसे होता ना सहतौते, वैसे स्त्रीलिंग में साते ताह चलता है। ताह रात्रि कहा, शरदोत्फुल्ल मल्लि कहा, आगे कहा कि वृक्ष रंतु मनः चक्रे योग माया समावृत, और अंत में भी कहते हैं ब्रह्म रात्रे उपावृत्ते। देखो ब्रह्म रात्र और ताह रात्रि से सिद्ध होता है कि वहां 1, 2, 3 रात्रियां नहीं थी। काल बल के नियंत्रण करने से प्राणियों को पता नहीं चला कि कितनी रात्रियां बीत गई। पुराण के अनुसार 43,20,000 वर्ष में आप 1,000 का गुणा कर दो, उतनी जो है ना ब्रह्म रात्रि कहलाती है और उतना ही दिन कहलाता है ब्रह्मा जी का। उतने समय तक जो है उस काल बल राक्षस को भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण ने दबा के रखा, नियंत्रित करके, किसी को पता ही नहीं चला कि महाराज कब तक चल रहा। ऐसे यहाँ पर भी जब भगवान शंकर तांडव नृत्य प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इसके पूर्व में काम का दहन किया, अब काम के बाद काल बल राक्षस को नियंत्रित करने के लिए यह लीला करने जा रहे हैं, तांडव लीला, ताकि पाषाण भी पिघल जाए। लोग कहते हैं ना कि पाषाण पिघल गया, तो पाषाण हृदय वाले को भी किस प्रकार से आनंद हो उसके लिए भगवान तांडव लीला करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से कोई राजा हो, राजा देश की सुरक्षा के लिए तमाम उपाय करता है, बहुत धन भी खर्च करता है, समय पड़ने पर संग्राम भी करता है, परंतु कोई यदि कहे कि अहिंसा परमो धर्म है, बेचारे क्यों संग्राम कर रहे हैं, लोग जो है मारे जाते हैं, इतना धन खर्च होता है, अहिंसा परमो धर्म, और जब मान लो शत्रु आक्रमण करेंगे तो क्या करेंगे, आप ही कहेंगे कि राजा नपुंसक है, देखो कुछ नहीं करता है, ये भोगी अय्यासी है, चुपचाप पड़ा रहता है, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, राज्य का अधिग्रहण कर लिया। तो कई बार रक्षा के लिए भी संग्राम करना पड़ता है। जो राजा शत्रुओं का दमन करता है या अपने राज्य के अंदर जो कुछ आतंकी है उनसे संग्राम करता है, तो संग्राम संग्राम के लिए नहीं, हिंसा के लिए नहीं है, वह भी अहिंसा के लिए, शांति के लिए है। ऐसे यहाँ पर भी जब भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं उस समय वामई विभूता कुछ विपरीत स्थिति संसार की बन जाती है। संसार मान लो चाहे वैकुंठ लोक हो या स्वर्ग लोक हो या पृथ्वी लोक हो, इसकी स्थिति बिल्कुल विलक्षण हो जाती है। जब कोई बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने में कितनी तकलीफ होती है उसे ही मालूम है, उसका लक्ष्य भी है शांति प्राप्त करना, पर शांति प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक किसान खेती करता

पर खेती करने में भी बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। कई बार तो फसल पकने के बाद यदि अचानक वर्षा हो गई, ओलावृष्टि हो गई तो नष्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी भगवान शंकर तो प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य कर रहे हैं, परंतु उस तांडव नृत्य से एक विलक्षण स्थिति बन जाती है, उसी का चित्रण किया है 16वें श्लोक में। और इसके बाद ज्ञान गंगा का अवतरण बतलाएंगे, पहले उच्चारण कर लें।

0: पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर तांडव नृत्य प्रारंभ करते हैं तो मही पादा घाता, नृत्य के पहले श्रृंगार बहुत जरूरी होता है। कोई भी जब किसी भी उत्सव में जब नाचता है तो नाचने के पूर्व श्रृंगार करता है। अभी आप लोगों ने परसों देखा ना कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आनंद उत्सव हुआ, तो कुछ जो है ना शोभा बढ़ाने के लिए या प्रजा के रंजन के लिए श्रृंगार करना पड़ता है। अब भगवान शंकर का श्रृंगार बड़ा विलक्षण है। चूड़ामणि कृत विधुर, भगवान का जो मुकुट है ना, वह मुकुट कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा है। टेढ़े चंद्रमा को तो मुकुट बनाया। चूड़ामणि कृत विधुर वलई कृत वासुकी, और वासुकी कृत को तो भगवान ने जूड़ा में बांध लिया अपने। भव भवत भव्याय लीला तांडव पंडित, इसके बाद भगवान इतने भी उनके गण हैं, उन गणों को निमंत्रित कर लिया हाथ में त्रिशूल। इसके बाद भगवान शंकर तांडव प्रारंभ करते हैं। तो भगवान के तांडव प्रारंभ करने से जो पाद के आघात से पादाघाताद मही संशय पदम सहस्ता ब्रजति अष्टान में की थी। भगवान शंकर का एक नाम है नटराज राज। देखो श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं, नटवर बोलते हैं ना, नटवर और नटराज एक ही अर्थ है। पर नटराज राज मतलब एक और राज जोड़ दो तो शंकर अर्थ हो जाएगा। व्याकरण महाभाष्य के पूर्व में एक श्लोक है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच वारम उद्धर तु काम सनकादि नेत्र। भगवान शंकर अपने भक्तों के कामना को परिपूर्ण करने के लिए तांडव नृत्य करते हैं। प्रयागराज में महर्षि पाणिनि तपस्या कर रहे थे और दूसरी तरफ सनकादि ऋषि भी समाधि लगाए हुए थे। पाणिनि ऋषि की कामना थी कि हमें व्याकरण दर्शन बनाना है तो उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, सूत्र चाहिए, और सनकादि ऋषियों की कामना थी तत्व ज्ञान की। तो भगवान शंकर जब तांडव नृत्य करके नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंच वारम अपने डमरू को, ढक्काम बोलते डमरू को, उस डमरू को नौ पंच, नौ और पांच कितना होता है 14, 14 बार बजाया। जब 14 बार बजाया तो उस 14 बार बजाने से सनकादि ऋषियों को तो तत्व ज्ञान हुआ, और इधर जो बाजू में बैठे थे पाणिनि महर्षि जो व्याकरण दर्शन के आदि आचार्य माने जाते हैं, पाणिनि जी ने 14 सूत्र संकलित कर लिया। ऐ उण रिल दृक् ए ओं ऐ औच हय वट लण यमंगणनम झभय घट दस जब गड दस कफ छठ छठ तव कपय सरहल। इस तरह से 14 सूत्र उसी डमरू के नाद से जो है निकला ऐसा अंकित कर लिया। एक ही डमरू का नाद है, उसे अपने प्रयोजन के अनुसार सूत्र निर्मित कर ली। उन्हीं सूत्रों के द्वारा इतना बड़ा व्याकरण दर्शन का सृजन हुआ। तो यहां पर भी भगवान शंकर जो तांडव नृत्य कर रहे हैं इससे सभी लोकों में प्रारंभ में बड़ा हलचल मचा। जब कहीं नाच गाना होता है ना कुछ हलचल भी होता है। तो मही मतलब पृथ्वी है, या अचानक संशयित हो गई पृथ्वी का अर्थ है पृथ्वी देवता की, जो पृथ्वी जो अभिमानी देवता है, पृथ्वी तत्व के जो अभिमानी चैतन्य है। हमारे यहाँ अनंत देववाद है और एक देववाद भी है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद का यह मंत्र है। एक ही तत्व चैतन्य है उसी को नाना प्रकार से कहा जाता है। जैसे एक ही विद्युत पावर है, वही विद्युत पावर अनेक यंत्रों के द्वारा अनेक कार्य करने में सक्षम होता है। पावर एक ही है पर इतने विपरीत कृत्य होते हैं। कूलर में, फ्रिज में ठंडी वस्तु होती है, हीटर में गर्म। ऐसे एक ही चैतन्य अनेक क्रिया करने में सक्षम होता है। ये उपाधियों का, यंत्रों का फर्क है। वैसे यहाँ पर पृथ्वी तत्व के जो अभिमानी देवता है, ये भगवान शंकर के तांडव नृत्य से, पद के आघात से, आपने देखा होगा कि भगवान का बायां पैर जो है ना नीचे दबा हुआ और ऊपर दाहिना उठाए, उस वाम पैर से काल बल राक्षस को दबा रखा है। फोटो में ना कई बार दिखाई देता है, कोई लेटा हुआ है, उसको भगवान शंकर का पैर जो लेटा हुआ है ना, वो काल बल राक्षस है जिससे कि मनुष्य बंधन भाव को प्राप्त करते हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज के पहले काल बल को धराशायी किया, इसलिए किसी को पता नहीं चला कितना समय बीत गया। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है ना संशयित हो गई, संशय पद को प्राप्त हुई कि हमारी स्थिति कैसे रहेगी। पदम विष्णु भ्राम्यत भुज परिग रुग्ण ग्रह गणम, और भगवान शंकर जब अपने भुजाओं को घुमाते हैं, त्रिशूल हाथ में है, तो भुजाओं के घुमाने से स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक भी वहां पर हलचल मच जाता है। जैसे कोई शंख बजाए ना तो कितना उसका गुंजार होता है, ऐसे ही वहां पर भी स्थिति जो है एक बार डवाडोल हो जाती है। सारे देवता खड़े हो जाते हैं कि क्या होने जा रहा है। मुहूर् द्यौ दौस्थ्यम, द्यौ लोक भी बार बार जो है संशयित हो जाता है, वहां पर भी वहां के प्राणियों को भी संशय हो जाता है। अनभृत जटा ताडित तटा, भगवान शंकर की जो जटाएं हिलती हैं, जटाओं के प्रहार से, स्पंदन से, हिलने से द्यौ लोक भी अपने आप में भ्रमित होने लगता है। जगत रक्षाए, अहो कन्वय करना, अहो मल आश्चर्य है, जगत की रक्षा के लिए जो भगवान का तांडव नृत्य है उससे विपरीत दशा हो रही है। ऐसे ही संसार में होता है। संसार में जब हम अपने परमार्थ मार्ग में अग्रसर होते हैं तो वहां पर विपरीत परिस्थितियां बन जाती है, बिल्कुल विपरीत। आप तो समाज के भलाई के लिए या प्रसन्नता के लिए कोई बढ़िया काम करते हैं,
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of shivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 3, Sukta 2. Thank you.

सविता प्रसविता सविता प्रार्पयत्वर्पयतु प्रसविता सविता प्रार्पयतु प्रार्पयत्वर्पयतु प्रप्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमायार्पयतु प्रप्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय अर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमायार्पयत्वर्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे कर्मणे श्रेष्ठतमायार्पयत्वर्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे श्रेष्ठतमाय कर्मणे कर्मणे श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मण आकर्मणे श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मण आ श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय कर्मण आकर्मणे कर्मण आप्याय

ओम अथ विंशोऽध्याय वैदिक पार्थिव पूजन प्रकार सूत उवाच अथ वैदिक भक्तानां पार्थिवार्चा निगद्यत वैदिकेन मार्गेण भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सूत्रोक्त विधिना स्नात्वा संध्यां कृत्वा यथा विधि ब्रह्मयज्ञं विधायादो ततस्तर्पणमाचरेत् नैतिकीं सकलं कामं विधायानन्तरं पुमान् शिवस्मरणपूर्वं हि भस्मरुद्राक्षधारकः वेदोक्त विधिना सम्यक् सम्पूर्ण फलसिद्धये पूजयेत् परया भक्त्या पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं नदीतीरे तडागे च पर्वते काननेऽपि च शिवालयेषु चौदेशे पार्थिवार्चा विधीयते शुद्धप्रवेश सम्भूतां मृदमाहृत्य यत्तरः शिवलिङ्गं प्रकल्पेत सावधानम्।

नजः होता आध्वर्युरावाय अग्निमिन्धोऽग्रावग्राभ उतशग्स्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आप्रोनध्वम् यूपव्रस्का उत ये यूपवाहाश्च शालये अश्वयूपा यतक्षाति ये चार्वाते पचानज्ञे सम्भरन्त्युतो तेषामभिगोर्तिर्न इन्वतु उप

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

है, प्रवेश ब्रह्म बृहस्पति ब्रह्म तेन विसज्जते पर्योह काम पद्यते।

0: நமஸ் சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நமஸ் சிவாய.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Brahmasutra Srikanda Bhashyam, presented by K.S. Mageshwaran Nambudiri.
2: Yet Sarvajnyatva Adi Vishishtam Ashtavidhana Adhikaranam Shivatattvam Tadeva Jagatkaranam Brahmai.
3: Iti Sutra Arthaha Vranita. Yet Sarvajnyatva Adi Vishishtam Janmadhyasya Yataha Iti Kaluktam Janmadhyasya Yataha Bhavati Utaha Bhavati Sarvajnyatva Adi Vishishtam Tat Swarupam. சர்வஜ்ஞத்வாதி விசிஷ்டம் ஸ்வரூபம் ஜகஜன்மாதி காரணத்துவ பிரதிபாதக வாக்கியபியா. ஜகஜன்மாதி காரணமாக எது தெரியறதோ அது எப்படி எப்படி தெரியறது? சர்வஜ்ஞத்வாதி விசிஷ்டமா தெரியறது. சரி, சர்வஜ்ஞத்வாதிகம் தஸ்ய ஸ்வரூப லட்சணம். ஜகஜன்ம பிரதிபாதக வாக்கியை அவகமியதே. சர்வஜ்ஞத்வாதி விசிஷ்டம் அஷ்டாபிதானாதிகரணம் சிவதத்துவம் ததேவ ஜகத் காரணம் பிரம்மே இத்யுச்யதே. அஷ்டாபிதானாதிகரணம் அதன் அபிதானம் இத்யுக்தே சம்யா நாம எட்டு பேர்கள் முக்கியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏற்கனவே வந்தது அத்த பாஷ்யக்காரே உத்தம் போவோம். பவ சிவ சர்வ பசுபதி பரமேஸ்வர மகாதேவ ருத்ர சம்பு பிரபிருதி பர்யாய வாசக சப்தசார பிரகாசித பரமசிவ பரமமஹிம விலாசஸ்யான் இருக்கு. பரமமஹிம விலாசஸ்யான் இருக்கு. ஆறு அஷ்ட எட்டு பிரபதித்தி ததாபி ஷண்ணாம் நாம்னாம் முக்கியத்துவம் இது பாதி. சர்வஜ்ஞத்வாதி விசிஷ்டம் அஷ்டாபிதானாதிகரணம் அஷ்ட அபிதானானாம் வாசகசப்தானாம் அதிகரணம் அது சம்ஞி அர்த்தம். அஷ்டானாம் நாம் சம்யா சம்யானாம் சம்யி தத் கிமர்த்தம் அத்த உக்தம் இத்துக்தே கஷ்டன பிரஷ்னா பூர்வபக்ஷனா கிருதா. லக்ஷ்யமேவ நஜ்ஞாயதே ததானி லக்ஷணம் கதம் வயம் சங்கமயாமஹ. இப்ப நீங்க ஜெகத்காரணத்துவம் இது லக்ஷணம் சொல்றீர்கள், ஆனா அது இந்த ஜெகத்காரணத்துவத்தினுடைய சமன்வயம் எந்த தர்மியில் பண்ணணும் என்றது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? லக்ஷ்யம் இப்போ கந்தவதி பிருத்திவி இத்தியத்திர கிளேஷோ நாஸ்தி. பிருத்திவி என்றது எதுன்னு லோகத்துல தெரியும். உஷ்ணஸ்பர்ஷக தேஜா தத்திர கிளேஷோ நாஸ்தி. தேஜஸ் என்றது என்னதே லோகத்தில் தெரியும். தத்திர உஷ்ணஸ்பர்ஷா அஸ்தி கலு அஸ்தி ஸ்வயம் பரீட்சிதும் வயம் பிரபவாம. பரந்து பிரம்மா இது லோக பிரசித்தம் வஸ்து நாஸ்தி. உபனிஷதா ஏவ அவகந்தவியம். தரி லக்ஷ்யமேவ சாமானிய ரூபேணாபி நஜ்ஞாயதே தஸ்யாம் தசாயாம் பவதா ஜகத்காரணத்துவம் லக்ஷணம் உச்சதாம் எத்கிமபி லக்ஷணம் உச்சதாம் வயம் கதம் தஸ் தத் கஸ்மின் லக்ஷ்யே யோஜனீயம் இது கதம் அவகச்சாம இது பிரஷ்ன கிருத கலு. தஸ்ய கா பரிஹாரா இதானீம் வக்தவ்யா तस्य परिहारः सूचितः. कथं लक्ष्यं केनापि रूपेण अस्माभिः न ज्ञायते इति न. एतादृशशब्दप्रतिपाद्यत्वेन उपनिषत्सु ज्ञायते खलु. पूर्वम् एतादृशशब्दप्रतिपाद्यं यद्वस्तु तद्वस्तु उपनिषत्सु जगत्कारणत्वेन प्रतिपाद्यते न वा इति परीक्षणीयं. प्रतिपाद्यते लक्षणसमन्वय आयतु जातं खलु. एतादृशैः शब्दैः उपनिषत्सु वा पुराणेषु वा आगमेषु वा किञ்சித் பதார்த்தா கஷ்டித் பதார்த்தா ஜெகத்காரணத்துவேன பிரதிபாத்தியதே வானவா பிரதிபாத்தியதே. தரி அஸ்மதுக்தம் லக்ஷணம் தத்ர சமன்விதம் இது வக்தும் சக்கியதே. ததர்த்தம் உக்தம் அஷ்டாபிதானாதிகரணம் சிவதத்துவம் ததேவ ஜெகத்காரணம் பிரம்மேத்யுச்யதே ஏவஞ்ச ஏதாதிஷ சிவாதி சப்த வாச்சியத்துவேன ரூபேண லக்ஷ்ய பரிஜானம் பிரதமதா பவதி. ஏதர்த்தம் உபனிஷத் தாத்பரிய விசாரா நாபேக்ஷிதே. சிவஹ இது சப்தஹா சிவசப்த கலு அயம் தஸ்ய கஷ்டன வாச்சியார்த்தோ வர்த்ததே ஜாதம் தாவதா லக்ஷ்ய பரிஜானம் ஜாதம். ஸ்வரூபம் ஞாதவயம் பஷ்யாத் ததர்த்தம் பரிச்சாயனார்த்தம் தடஸ்தலக்ஷணம் உச்சதே ஸ்ருத்யா. தஸ்ய சமன்வயம் தத்ர கர்த்தும் சக்யதே. ததப் பரம் சர்வஜ்ஞத்வாதிகம் யதா ஸ்ருத்யா ஏவ உச்சதே தத் ஸ்வரூபமபி அவகந்தும் சக்யதே. ஏவம் ரீத்யா லக்ஷண பிரயோஜனம் அஸ்தி. சம்யக் தத்ர பூர்வபக்ஷகஹ சித்தாந்தகஹ இதி இதம் அபேக்ஷதே. ஆனந்தாதீனாம் தர்மாணாம் அபி ஆனந்தாதயஸ்து தர்மா தேஷாம் தர்மாணாம் சர்வேஷாமபி அஸ்மின்னேவ ஏகஸ்மின் தர்மணி பர்யவசானம் சங்கிரஹ கர்த்தவ்யா. ஆனந்த பிரம்மா ஞான பிரம்மா அப்படி இல்லை. இந்த ஒரே ஒரு வஸ்து ஜெகத் காரணமாக தெரியக்கூடிய ஒரே ஒரு வஸ்துவில ஆனந்தாதி தர்மாணாம் அத்தைவ பர்யவசானம் பரீட்சாயாம் கிருதாயாம் சர்வேபி அசைவ தர்மா இது அக்ரே விசாரோ பவிஷ்யதி கலு. तर्हि तत्र पर्यवसानं भवति, विचारेण अस्माभिः पर्यवसानं च कर्तुं शक्यते.
4: तत्र आनन्दं आनन्दो ब्रह्म इत्यादि वर्तन्ते, नारायणो परं ब्रह्म.
3: तत्र अस्ति, तत् अस्ति, क्रमेण आगच्छति आगच्छति तद् सर्वत्र. शङ्कापरिहारपरिहारास्तु इतोपि कर्तव्याः. इदानीं लक्षणत्वमेव न सम्भवति इति यदुक्तं, तस्य इत्यादि सामान्य आपाततः उत्पन्नानां प्रश्नानां परिहारस्तु जातः तावदेव.
2: सर्वज्ञत्वं, नित्यतृप्तत्वम्, अनादिबोधत्वं, स्वतन्त्रत्वम्, आलुप्तशक्तित्वम्, अनन्तशक्तित्वं च इत्येतानि सर्वज्ञत्वादीनि.
3: सर्वज्ञत्वादिविशिष्टम् इत्युक्तं, सर्वज्ञत्वादीनि इत्युक्ते षडङ्गानि, षडङ्गानि इति प्रसिद्धम्. एते षडङ्गानि इति व्यवहारः वर्तते. इद् आगमङ्गल्ले कडयाद इद् सर्वज्ञत्वं, नित्यतृप्तत्वम्, अनादिबोधत्वं, स्वतन्त्रत्वम्, अलुप्तशक्तिमत्वम्, अनन्तशक्तिमत्वं चेतानि परमेश्वरस्य षडङ्गानि इति वर्तते. स्वरूपान्तर्गताः धर्माः इत्यर्थः. स्वरूपे नित्यं विद्यमानाः धर्माः इति अङ्गं नाम तावदेव विवक्षितम् इति एते अत्र ग्राह्याणि. स्वरूपं, स्वरूपप्रतिपादनाय, तत् स्वयमेव उक्तस्य विवरणं. सर्वज्ञत्वादिविशिष्टान् सन्नर्लिया आदिशब्देन के ग्राह्याः इति स्वयमेव उक्तं तावदेव. वर्तन्ते अवश्यं.
2: अपरोक्ष अनपेक्षित बाह्यकरण निष्कलङ्क, बाह्यकरण निष्कलङ्क अनुभव विषय निखिल वस्तुत्वं इह सर्वज्ञत्वम्.
3: नित्यापरोक्ष अनपेक्षितबाह्यकरण, अनपेक्षितबाह्यकरणत्वम् एकं विशेषणं. नित्यापरोक्ष अनपेक्षितबाह्यकरण निष्कलङ्क अनुभव विषय
2: निखिल
3: नित्यापरोक्षः एप्डि तेरिमा नित्यापरोक्षः अनपेक्षितबाह्यकरणः निष्कलङ्कः यः अनुभवः तद्विषय निखिलवस्तुत्वम् इह सर्वज्ञत्वम्. इदानीं कुत्र समन्वयः भवति? सर्वज्ञे समन्वयः कर्तव्यः खलु. सर्वज्ञत्वं, निखिलवस्तुत्वम् इति परिवसानं क्रियते. कथम् इत्युक्ते विग्रहो वक्तव्यः तद्वत्. यस्य यस्य परमेश्वरस्य यः अनुभवः, तस्य अनुभवस्य निखिलं वस्तुविषयः, तर्हि सर्वविषयकज्ञानवत्त्वं सर्वज्ञत्वम्. अदल पुरुषावनुल्ल सर्वं ये जानाति इत्युक्ते निखिलवस्तुविषयकज्ञानवान् अयं. निखिलवस्तुविषयकज्ञानवत्त्वं वर्तते इति. निखिलवस्तुविषयकज्ञानम् एण्ड्रद् எப்பேற்பட்ட ஞானம், பரோட்சஞானமா அபரோக்ஷானமா கேட்டா அபரோக்ஷானம் சொன்ன இல்லையா, அதர்த்தம் நித்யாபரோக்ஷத்துவம் இது விசேஷம். அந்த அனுபவம் எப்படி வந்தது, ஏதாவது எந்த காரணத்தினால வந்ததுன்னு கேட்டா மனசு ஒத்துருக்க, பரமேஸ்வரஸ்ய மனஹ அஸ்தி இது அங்கீகிருதம். பாஹ்யகரணம் அபேட்சித, அதுக்காக பாஹ்யன்னு போட்டிருக்க. பாஹ்யகரணங்கள் அபேட்சிதமா இல்ல, அந்தக்கரண மாத்திரேன உற்பத்தியமானம் ஞானம் இதம். நித்ய அபரோக்ஷ நித்யாபரோக்ஷம், நித்யம் ஞானம் இல்ல, நித்யா நித்யம் அபரோக்ஷம் யஞானம், நியமேன அபரோக்ஷம், அனபேக்ஷித பாஹ்யகரணம், நிஷ்கலங்கம் தோஷரஹிதம், நிஷ்கலங்கம் நிஷ்கலங்கமான எந்த ஒரு அனுபவம் உண்டோ தாதுஷ அனுபவ விஷய நிகில வஸ்துத்வம், அனுபவம் பிரதி விஷயீபூதம் நிகில வஸ்துத்வம் யஸ்ய சஹ சர்வஜ்ஞஹ. सर्वज्ञः तदेव सर्वज्ञत्वम्.
2: यः सर्वज्ञः सर्ववित्, यस्य ज्ञानमयं तपः इत्यादिभि इदं ब्रह्मणः सिद्धम्.
3: यः सर्वज्ञः सर्ववित्, यस्य ज्ञानमयं तपः इत्यादि इत्यादि श्रुतिः. सर्वज्ञः सर्ववित् निल्कल्या विशेषज्ञानव इत्यस्ति. सामान्यज्ञानं सर्वस्यापि भवति.
2: विशेषज्ञानम् इत्युक्ते निष्कलङ्कं,
3: निष्कलङ्कमिल्ल तत्तद्रूपेण सर्वविषयकज्ञानं சர்வஜ்ஞத்வவ்யவஹாரப்ரயோஜகம் இருக்கு. சர்வவிஷயகஜானம் சர்வஜ்ஞத்வவ்யவஹாரப்ரயோஜகம் இல்ல, தெரியாதா? தத்தத் ரூபேண சர்வவிஷயகஜானம் சொல்லணும். அன்யதா சர்வேபி சர்வஜ்ஞா. கதம் சர்வம், சர்வம் இத்யுக்தே அர்த்தம் புரியுறது இல்லையா? தெரி த்வம் சர்வஜ்ஞா ஜாதா. சர்வசப்தஜன்ய உபஸ்திதி விஷயக்கஹ சர்வம், சர்வபதஜன்ய உபஸ்திதி விஷயக்க சர்வம் தானும் ஜாதா ஹலு தவ உபஸ்திதி தரி சர்வம் ஜாதம் இது ஏவம் சார். அத்த तत्तद्रूपेण इति वक्तव्यं प्रमेयम् इति पदं श्रुत्वापि सर्वज्ञत्वं भवति प्रमेयत्वेन रूपेण सर्वं प्रमेयं खलु अतः एतादृशं सर्वज्ञत्वम् अस्ति सर्वेषां वर्तते परन्तु इदम् अयं सर्वज्ञः इत्येवं व्यवहारे प्रयोजकं न तत्तद्रूपेण अवगन्तव्यम् अतः यः सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यत्र इदं तर्कसङ्ग्रहदीपिकायामपि उदाहृतम् इदं वाक्यम् ईश्वरसिद्धौ दीपिकायां नास्ति वा अस्ति भाति ईश्वरसिद्धौ श्रुतिरपि प्रमाणं यः सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यादि श्रुतिर्मानम् इत्युक्त्वा सर्वज्ञः सामान्यरूपेण सर्वज्ञानवान् सर्ववित् विशेषरूपेण सर्वज्ञानवान् इत्युक्तम् अन्यथा सर्वज्ञः सर्ववित् इति पौनरुक्त्यं भवति सर्वज्ञः इति यदुक्तं तदेव सर्ववित् इत्यस्यापि अर्थः अतः पौनरुक्तिवारणाय सर्वज्ञः इत्युक्ते सामान्यरूपेण सर्वज्ञानवान् सर्ववित् इत्यस्य विशेषरूपेण सर्वज्ञानवान् अर्थं पणिता
2: अनेन सकलचेतन बहुविध कर्मफलभोगानुकूल तत्तच्छरीरनिर्माण उपाय सामग्री विशेषज्ञं ब्रह्मनिमित्तम्
3: ब्रह्मणः निमित्तकारणत्वम् इदानीम् उक्तम् वस्तुगत्या निमित्तकारणम् उपादानकारणं च भवति इति समर्थनीयम् अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वम् इति वर्तते अस्माकं मते तर्हि इदम् अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वम् अद्वैतमतेऽप्यस्ति शैवमतेऽप्यस्ति विशिष्टाद्वैतमतेऽप्यस्ति माध्वमते नास्ति नैयायिकवदेव नैयायिकानां मते ईश्वरस्य निमित्तकारणत्वमेव किल अस्ति बीजाय इत्यस्य निमित्तकारणाय इति भ्रमिकगुडा वेदान्तं पठिचि ब्रह्ममन्त्रमोहं भयन्द्रं निमित्तकारणाय इत्यर्थः उक्तावलिकार पोटिकार इदानीं किं भवति परमेश्वरस्य एकस्यैव उपादानकारणत्वं निमित्तकारणत्वञ्च उपपादनीयम् अत्र किं लिखितम् अनेन सकलचेतन बहुविध कर्मफलभोगानुकूल तत्तच्छरीरनिर्माण उपाय सामग्री विशेषज्ञं ब्रह्मनिमित्तं भवति ज्ञानवत्वेन निमित्तकारणत्वम् अर्थं सृष्ट्यनुकूलज्ञानवत्वेन निमित्तकारणत्वम् इत्युक्ते निमित्तकारणता अवच्छेदकमन्यत् उपादानकारणता अवच्छेदकमन्यत् ഒരു രീതിയിൽ നിമിത്തകാരണം ഇന്നൊരു രീതിയിൽ ഉപാദാനകാരണം ചൊല്ലുന്നില്ല അതാ ശാസ്ത്രീയ ഭാഷയിൽ ചൊന്നാൽ നിമിത്തകാരണതാവച്ഛേദകം സർവജ്ഞത്വം സർവജ്ഞത്വന രൂപേണ സഹ നിമിത്തകാരണം അന്യന രൂപേണ ഉപാദാനകാരണം ഉപാദാനകാരണം എപ്പിടി ചൊല്ല പോരാ അപ്പുറം ഇപ്പൊ സകല ചേതന സകലേ ചേതനാ തേഷാം ബഹുവിധ കർമ്മഫലഭോഗ തദനുകൂലം കിം തത്തച്ഛരീരം एवमेवं तन्निर्माण उपायसामग्री विशेषज्ञत्वं परमेश्वरस्य कथं निर्माता कीदृशं कस्य कीदृशं शरीरम् इतः परं दातव्यम् ज्ञानमस्ति विशेषज्ञत्वं विशेषज्ञत्वं ब्रह्मणः वर्तते तादृशविशेषज्ञत्वेन ब्रह्मनिमित्तकारणम् इत्युच्यते एवम् इप कुलालः घटं प्रति निमित्तकारणम् इति कुतः उच्यते अद् पण्डतुक् अवनुकु तेरियुम् अद् अरिव वचिण्डु ताने निमित्तकारणं सोल्रद् तदेव तस्मात् निमित्तकारणम् इत्युक्ते कर्ता इति कः उच्यते लोके तेरिञ्जु पण्ड्रवन् शृणम् कण्डिपा अपिता शृणम् मुख्यं कर्तृत्व मुख्यः कर्तृत्वव्यवहारः एङ्गे इरुक् तेरिञ्जु पण्ड्रवनुक्कु तान् इरुक् पाककृतः इदं कर्त सूपं सूपकर्तव्यः इति कृतम् अनन्तरं प्रकारान्तरं जातं किम् अवियल् जातं साम्बार् कर्तव्यम् इति चिन्तितम् अवियल् जातम् इति मन्यताम् इदानीम् अहम् अवियल् कृतवान् इति व्यवहारः मुख्यः नास्ति साम्बार् कर्तुमेव चिन्तितम् अवियल् जातं न पण्डिनेन चलकूडा तेरिञ्जु पण्डल पुरियुदिल्या तत् कर्तुम् अपेक्षितं ज्ञानं सम्पाद्य तदर्थं बुद्धिपूर्वकं कृतं चेत् मया कृतम् इति व्यवहारः अन्यथा जातम् इति व्यवहारः एवमेव श्लोके अतः तत् तद्विषयकविशेषज्ञानवत्त्वं कर्तृत्वव्यवहारे प्रयोजकम् इदं लोकव्यवहारं कामिच अवदा विलयटका चलले अवदा शास्त्रे तथैव उदाहरणं कुर्वन्ति विनायकं विनायकं प्रकुर्वाणः रचयामास वानरं निर्ग विनायकं प्रकुर्वाण विनायकने विनायकरुडय प्रतिमे पण्णनं नेनचिंदे मण्ण पोट्टु अद स्वाभाविकं इल्लया वानरं मादिरि आयिट्टे वानरः जातः इत्येव पण्णिनेन चलकूडादु चलुवा एना सत् मया वानरं कर्तुमेव मया यत्नः कृतः इति वदेत् पश्चात् तत् कपटं तद् कपटव्यवहारः अतः तत् सृष्ट्यनुकूलज्ञानवत्त्वेन कर्ता इत्युच्यते कर्ता निमित्तकारणं खलु तर्हि जगत्कर्तृत्वेन रूपेण परमेश्वरः निमित्तकारणं कर्तृत्वं नाम உபாதான கோச்சர அபரோக்ஷ ஞான சிகீரிஷா கிருதிமத்துவம் கர்த்தத்துவம் நியாயசாஸ்திரத்தில் இருக்கு, அதையும் எடுத்துக்கலாம். சிகீரிஷா இருக்கணும், கிருதி இருக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும், ஞானம் இருக்கணும், உபாதான கோச்சரம் அது எது எது பண்ணணுமோ தஸ்ய உபாதான விஷயகம் அபரோக்ஷ ஞானம் சர்வம் சர்வ விஷயக ஞானம் தத் கதம் கர்த்தவ்யம் இது ஞானம் ததர்த்தம் இச்சா ததர்த்தம் பிரயத்னா இதெல்லாம் இருந்தால் கர்த்தான்னு சொல்லுவோம். சரி, இதம் கர்த்திருவ விவகார பிரயோஜகம், அது பரமேஸ்வரன்கிட்ட இருக்கிறதுனால அவர் கர்த்தா என்ற நிலைமையில நிமித்த காரணம் சொல்லுவார். கர்த்திருவ ரூபேண நிமித்த காரணம் இது விவகரியதே இத்தியுக்தம். உபாதான காரணத்துவ விஷயக நிரூபாரஸ்து பஷாத் கர்த்தவிய அஸ்து அத்த ஸ்தாபி.
5: ஓம் நமசிவாய். You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: भगवत पाद आचार्य शंकर अपना मनीषा यानी निश्चय प्रार्थना के रूप में भगवान सांब सदाशिव के सामने प्रस्तुत करते हैं। भूमिका को स्मरण करना चाहिए। जन्म जन्मांतर की जो संस्कार है उस संस्कार के परवश होकर के जीव जीता है। अवचेतन मन में उस संस्कार जो है प्रबल होता है। अधिकतर समय उस संस्कार को हम ध्यान भी नहीं देते हैं, परंतु परिस्थिति परिवेश उपस्थित होने पर अचेतन भाव से ही वो संस्कार जो है प्रबल हो उठता है और अपना जो अस्तित्व है उसको प्रकट कर देते हैं। इसलिए भगवत भक्त जन जीवन में न जाने कितने बार इस संसार में आना पड़ा, केवल मनुष्य रूप से ही नहीं, क्या क्या जन्म लेना पड़ा, सब संस्कार इसमें है। इस संस्कारों को परिशोधन करना, संप्रोक्षण करना, संशोधन करना, यही है साधना। उस संस्कार को क्या है संस्कार वो पता नहीं है हम सबको, परंतु कहीं ना कहीं मन में उस संस्कार को अगर शोधन शुद्धि करने की इच्छा है तो जीवन भर सत्कर्म सद आचरण सद विचार सद भाव इस सब में अगर जीवन को बिताते हैं लगाते हैं तो जितने भी संस्कार है चाहे वो अशुभ क्यों ना हो वो अशुभ संस्कार शुभ वासना शुभ कर्म शुभ भाव से दब जाता है, परिशोधन कर सकते हैं। इसीलिए भाष्यकार ग्रंथकार आचार्यों ने बारंबार सत्कर्म सद भाव में रहना, सद विचारों को दिल में बैठाना, ऐसा जीवन में कोई भी आचरण नहीं होना चाहिए कि वो अशुभ संस्कार और दृढ़ होता जाए। इसीलिए प्रत्येक आचरण में प्रत्येक चिंतन में प्रत्येक भाव को आप देखें और सजग होकर के कि मन में न जाने कितने प्रकार के भाव है उसमें अशुभ और शुभ दोनों हो सकता है, परंतु अशुभ को मिटाने के लिए शुभ वासना शुभ कर्म शुभ संस्कार शुभ प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए तो ऋषि कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा। वो ऋषि की प्रार्थना है, जैसा लगता है वैदिक काल में वो प्रार्थना वो किए तो इस वर्तमान युग में हमारे लिए क्या करना चाहिए। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। कई बार हम चीज देखते हैं हमें लगता है कि इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं संस्कार नहीं, इसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ सकता है। नारायण यह मन यह अंतकरण ऐसा एक तत्व है, आप चाहे न चाहे अनवरत वो जो है प्रत्येक छवि को प्रत्येक चित्र को, प्रत्येक विषय को जो ही आपके कांटेक्ट में आता है वो जो है स्नैप ले लेते हैं। आपको पता तक नहीं लगेगा कि कब वो क्लिक हो गया। और परिस्थिति आने पर जब आप एकांत होना चाहते हैं, मन को वश में करना चाहते हैं, मन को प्रभु चरणों में अर्पण करना चाहते हैं, मन के शुभ भावों को आप देखना चाहते हैं, तब वो अशुभ भाव, अशुभ दर्शन, अशुभ विचार, अशुभ जितने भी आपने संग्रह किया वो सब प्रबल होकर के आपके शुभ भाव को मिटाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इसीलिए जब भी मन में आए कि अमुक कर्म करूं अगर वो सत है तो तुरंत उस पर उसको कर लेना चाहिए। सत कर्म में, सद्भाव में पोस्टपोन की थ्योरी ठीक नहीं है। हम लोगों की चित्त की एक धारा है जो शुभ है उसको हम ढकेलते रहते हैं, बाद में करूंगा। जो काम्य है, कामना प्रयुक्त है, जिसमें सामान्य सुख निहित है, श्रेय नहीं है, प्रेय है, उसके लिए हम अधिक प्रयत्न करते हैं और उसको कर लेते हैं। भगवत भक्तजन जो संस्कार शुभ चित्त को परिशोधन करने में सक्षम है उसको अधिक से अधिक आचरण करना चाहिए। और यही आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी अपने जो गौड़ ब्राह्मणत्व का जो अभिमान है, चूंकि इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष है, सर्वशास्त्र विद है, फिर भी उनके जीवन में एक संस्कार, टीकाकार लिखते सैव संस्कार प्रबल तर, जीवन भर गुरु सन्निधि में रह करके विद्या अभ्यास करते हुए साधना के द्वारा एक स्थिति में पहुंचे हैं, फिर भी वो जो संस्कार वो अभी भी पीछा। तो ऐसा साधक, ऐसा मनोवृत्ति, मन की दशा तो अपनी नहीं है नारायण। तो जब हम कुछ कर्म करना चाहते, शुभ विचारों को लाना चाहते, तो वही अशुभ संस्कार जो है हमें भी बाधक के रूप में, प्रतिबंधक के रूप में उपस्थित हो जाता है। और उस संस्कार के परवश होकर के आचार्य अपना जो है रिएक्ट भी करते हैं। इसलिए मैं पहले दिन ही बताया कि आचार्य को एक सामान्य मनुष्य, मानव, किस प्रकार वह अति मानव देव भूमि तक पहुंच सकते हैं। मैन इज रैशनल एनिमल, रैशनलिटी एनिमलिटी दोनों है नारायण। आप मनुष्यत्व तब अर्जन कर सकते हैं जब आप अपने विचारों को, भावों को संशोधन के द्वारा एक दिव्य सत्ता की ओर जा सकते हैं, तब आप मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकते। इसलिए एनिमिलिटी को पूर्ण रूप से दूर करना कठिन है, असंभव सा है, दीर्घ प्रयत्न और वो विचार रैशनल, ये विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा संस्कार को थोड़ा सा शोधन करना है। और तब जाकर के आपके अध्यात्म जीवन की शुरुआत हो सकती है। नहीं तो माला लेकर के बैठ सकते हैं, प्रभु के पास पहुंच भी सकते हैं, परंतु वो संस्कार अगर प्रबल है तो हम प्रभु के पास फिजिकली शरीर से तो उपस्थित हो सकते हैं, परंतु मेंटली उतना ही दूरी में मौजूद होते हैं। प्रभु के साथ नैकट्य मानसिक स्तर पर होना चाहिए, फिजिकल स्तर पर होकर के कुछ मिला नहीं, कुछ पाया नहीं, कुछ अनुभव नहीं हुआ। और वो अगर हम मेंटली मानसिक स्तर पर उनके निकट पहुंचते हैं तो हमारे जीवन को एक प्रकाश, एक तृप्ति, एक शांति दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विचारों को भावों को जब हम करते हैं, वो विचार करने से नहीं, वो विचार में अमल होना है, उतरना है, लाना है प्रयोग में, तब जाकर वो विचार आपके जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। और आज जगतगुरु शंकराचार्य जी के जीवन में वो हम देखते हैं कि संस्कार के परवश होकर के एक ज्ञानी महापुरुष, चाहे अगर प्रत्यक्ष न भी माने, परोक्ष रूप से वो ज्ञान को प्राप्त किए और वो संस्कार को, ये जो वासना है, अशुभ संस्कार है, उसको दूर करने के लिए आदिदेव महादेव उपस्थित हुए हैं। भगवत भक्त जन साधक के जीवन में ये बहुत ही एक अनोखा उपलब्धि है। जब वो साधना में तत्पर हो जाते हैं, उनके जीवन में अगर ऐसा कोई भी त्रुटि हो, आपके समर्पण, आपके आचरण, आपके डेडिकेशन के ऊपर निश्चय है कि प्रभु का आगमन, और वही आचार्य के जीवन में हम देखते हैं। भगवान विश्वनाथ ने विचार किया, सोचा कि ये संस्कार इनको बहुत दूर ले जा सकता है, इसीलिए वो स्वयं अंत्य वेश धारण करके चांडाल रूप से उपस्थित हो करके उनके जो संस्कार है उसको दूर करने का प्रयत्न किया। तो क्या ये हमारे जीवन में नहीं संभव है, हो नहीं सकता है? बिल्कुल हो सकते नारायण, और वही संभव है जब आपके जीवन में इस प्रकार के समर्पण, इस प्रकार के सद आचरण, सद विचार आप कर सकते हैं। आचार्य ने अपने उस संस्कार के परवश उस चांडाल को हट जाओ करके भगाया, परंतु जब वो देखा कि ये चांडाल हटना तो दूर और जो है निकट आने लगा, तब वो घबराया और सामने एकदम निकट आकर के सामने आकर के खड़े हो गए। मदमस्त घोर अघोर एक रूप है बाबा विश्वनाथ के, और उस रूप को आचार्य पहचान नहीं पाए। इसलिए भगवत भक्तजन ध्यान के द्वारा उन्होंने उस स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को पहचाना। जब हम आचार्य की जीवनी को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, लगता है कि जीवन में ध्यान है, साधना है, सत्कर्म है, सद्भाव है, सद्विचार है, तब जाकर कि उन्होंने ध्यान में पारंगत होकर के उस दिव्य स्वरूप का अनुभव किया। परंतु तो जब इधर देखते हैं अपने पास, तो वो योग्यता भी नहीं लगता है कि हम कोई अगर आवृत्त सत्ता आवरण लेकर के प्रभु भी हमारे पास आ जाए। क्या पता आपके जीवन में, हमारे जीवन में ईश्वर आया नहीं हो, ऐसा है क्या? नहीं आया है क्या? पता आया हो, आप पहचान नहीं पाए। उस योग्यता को विकास करने के लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न, भगवत भक्तजन भावों को शोधन, संशोधन की जरूरत है। हमेशा नेगेटिव विचारों में नहीं रहना है, किसी के बारे में किसी कोई भी थॉट्स को हमें बिल्कुल नेगेटिव नहीं, पहले हम पॉजिटिव देखें और हो सके तो जितना हो सके हम सकारात्मक भावों को ही मन में प्रतिष्ठित करें। नकारात्मक तो स्वतः संभव है, आ जाता है, परंतु उसको हटाना है, साधना है। नहीं तो देखिए, आप पार्क में बैठे हैं, अचानक आपके पास कोई आकर के बैठा और आपकी तरफ दो तीन बार देखा, आपके हाथ में पार्ट्स है, हाथ में मोबाइल है, दो तीन बार देखा, आपके मन में कौन सा विचार आया होगा? बहुत सहज है, स्वाभाविक है कि क्या पता कोई नहीं है, 7:30 बज रहा है, ये कहीं मोबाइल लेके तो नहीं भागे, कहीं चोर तो नहीं है। आपके पास में जो बैठे थे, आपके मन में जैसा ही विचार आया वो आप उनसे शेयर की कि देखो कैसे देख रहे हैं, हमको तो ठीक नहीं लग रहा है, चलो चलो यहां से चलते। वो व्यक्ति कह रहा, अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो, वो तो अन्य भी हो सकता है, वो कुछ तुमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। दोनों भावों को देखिए। एक संत जी भिक्षा करने गए और उस घर की बेटी जो है भिक्षा देने पहुंचे और वो युवा संत जो है उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से देखने लगे, तो उस लड़की ने क्या सोचा है? अंदर जा करके अपने भाई को, पिता को कहा कि देखो कैसा देखने, इसका दृष्टि जो है बड़ा खराब लगा मुझे। भाई जो है गरम होकर के आए, अपमान किया, और पिताजी जो है धक्का देकर के निकाल दिया। संत तो निकल गए और वो ज्यों ही वो निकल गया, कुछ समय पश्चात उस घर में एक अघटन, पिताजी जो है बीमार हो गए। बहुत कोशिश किया परंतु उस अस्वस्थता से स्वस्थ नहीं हो पाए। किसी ने बोला कि कुछ किया तो नहीं, तो उस लड़की के दिमाग में आया कि अरे कल जो है हमने ऐसा किया, अगर शायद उनकी दृष्टि ऐसा नहीं था, मैं कुछ ज्यादा ही बता दिया था। उनके मन में आया और वो भाई को भेजते हैं कि जाओ जाओ। और वो संत जी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान से केवल प्रार्थना ही कर रहे थे कि मेरी दृष्टि में ऐसा कोई भाव नहीं है। जब वो लड़का को देखा तो संत के मन में आया कि क्यों ये फिर आया है, और उनके उस भाव को पूर्व घटना जो है मन में आया और वो संत के आंखों से आंसू आने लगे। तो वो बालक वो पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो आप हमें क्षमा कीजिए, मेरे पिताजी की ये अवस्था है, आप आशीर्वाद दीजिए, आप चलिए। संत जी कहने लगे कि देखो मैंने तो देखा केवल कि मैं कब घर छोड़ा, और घर छोड़ते समय आज तुम्हारे बहन को देख करके मुझे मेरी माँ की याद आई, और मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा कि मेरी माँ भी ऐसी थी, लेकिन तुम लोगों ने अलग अर्थ, गलत अर्थ निकाला, और यही मैं पश्चाताप में भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर मेरी दृष्टि शुद्ध है तो ये शुद्ध दृष्टि उनको क्यों नहीं इफेक्ट किया। मेरे मन में तो ऐसा कोई भी भाव नहीं है। इसलिए भगवत भक्तजन, आप किस भाव को रखते हैं वो बहुत मायने करते, जीवन को बहुत अर्थ रखते हैं। और वो शंकराचार्य जी जो है दूर हट जाओ किया, और आचार्य के पास आकर के विश्वनाथ खड़े हो गए, और फिर विश्वनाथ उनसे दो प्रश्न पूछते हैं।
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kunguliya Kalaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: ओम नमः शिवाय। भक्तों, अभी हम सुनेंगे और एक नायनमार या संत की कहानी जिनका नाम था कुंगलिय कलयनार। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध स्थल तिरुकडलूर है। यह मयिलाडुतुरई नामक शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल में इस स्थल पर मार्कंडेय ऋषि की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव ने यमराज को लात मारी थी। इसी तिरुकडलूर में एक संपन्न ब्राह्मण कुल में कलयनार नामक शिव भक्त का जन्म हुआ। वे सदा ईश्वर के सन्निधि में अगरु या धूप जलाकर पूरे मंदिर में सुगंधित धुआं फैलाने में आनंद का अनुभव करते थे। कलयनार के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह धूपदान सेवा ही था। समय बीतता गया, धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति संकट से घिर गई और वे बहुत गरीब हो गए। गरीबी के कारण घर में अन्न का अभाव हो गया, यहाँ तक कि कई दिन तक परिवार में सबको भूखा सोना पड़ता था। एक दिन उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी ने अपना मंगलसूत्र देखकर उन्हें भोजन सामग्री लाने के लिए कहा। पतिव्रता स्त्री मंगलसूत्र की रक्षा को सर्वोच्च मानती हैं, लेकिन बच्चों की भूख की व्याकुल स्थिति देखकर उनसे रही नहीं गई और उन्होंने अपने पति कलयनार से कहा कि जाओ इसे बेचकर कुछ धान्य सब्जियां लेकर आओ। चावल खरीदने के लिए कलयनार बाजार की ओर चल रही है। भगवान शिव ने इसी वक्त अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए अवसर चुना। एक व्यापारी अगरु या धूप बेचता हुआ कलयनार के सामने आ गया। बस फिर क्या था, वे चावल, भूख से बिलखते बच्चे और पत्नी को भूल कर मंगलसूत्र के बदले धूप लेकर सीधे मंदिर आ पहुंचे। सब और धूप की धुआं फैलाकर आनंदातिरेक का अनुभव करने लगे, परंतु कुछ देर पश्चात भूख और थकान के कारण कलयनार चक्कर खाकर गिर पड़े। तभी भगवान शिव ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और उनसे कहा, जाओ घर से खीर लेकर आओ। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस उनमें नहीं था और वे भगवान से इतना प्रेम करते थे, उन्होंने बिना सोचे समझे अपने घर की ओर चल पड़े। जाते ही उन्होंने क्या देखा, यह देखा कि उनके घर के स्थान पर एक बहुत बड़ा घर है। उनकी छोटी कुटिया के सामने एक बहुत बड़ा घर है। वे आश्चर्यचकित हो गए। इसका कारण कुछ इस प्रकार था। इधर कलयनार जब मंदिर में धूप जला रहे थे, उनकी धर्मपत्नी बच्चों की बिलखते हुए रोदन को बंद कराकर उनसे प्रभु के गीत गाकर उन्हें सुलाने में लीन थी। वह शिव भक्ति में लीन थी। शिव इस दंपति के स्नेह भाव से प्रसन्न हुए। पत्नी को स्वप्न दर्शन देकर शिव प्रभु ने उसे अपार धन धान्य का आशीर्वाद दिया। नींद खुलने पर उसे सर्वत्र धन ऐश्वर्य और भारी मात्रा में भोजन पदार्थ देखकर वह विश्व विमूढ़ हो गई। तुरंत भोजन बनाकर वह पति की प्रतीक्षा करने लगी। कुंगलियर नायनार जब घर पहुंचे तो उन्होंने शिव की कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उन्होंने खुद खीर बनाकर भगवान के यहाँ पर भोग लगा दिया। एक दिन कलयनार कुंगलियर नायनार, जिन्हें कलयनार भी कहते हैं, तिरुपनंताल में ताटकेश्वर शिव के दर्शन के लिए गए। वहां का शिवलिंग तिरछा हो गया था। स्थानीय राजा और उनकी सेना ने अनेक शक्तिशाली वीर शरीर को रस्सी से बांधकर उस शिवलिंग को सीधा करने के प्रयास में असफल हो चुके थे। तभी कुंगलीय कलयनार के मन में आया, क्यों न वे भी उनकी भांति प्रयत्न करके असफल हों। भगवान के लिंग शरीर से बंधी हुई रस्सी को अपने शरीर के साथ बांधकर उन्होंने खींचना प्रारंभ किया। तभी चमत्कार हो गया। कुंगलीय कलयनार के प्रेम रूपी पाश में बंधे शिव तुरंत ही सीधे हो गए। सर्वत्र जय जयकार की घोषणा हो गई। कुंगलीय कलयनार तिरुकड़ूर लौटे। कालांतर में उन्हें अपने यहाँ महान भक्त तिरुनावुक्कु अरसर और तिरुज्ञान संबंदर आदि के स्वागत सत्कार का सौभाग्य मिला। तिरुपनंताल की अद्भुत घटना पर गहन चिंता अपेक्षित है। एक राजा और उनकी सेना और उनकी सारी हाथी घोड़े सब जिस शिवलिंग को सीधा करने में असमर्थ रहे, वहीं पर कुंगली कलयनार की प्रेम रूपी पाश में पड़कर भगवान शिवलिंग सीधे हो गए। इसी घटना के चलते महान संत चिक्किलियर कवि ने कहा है, हाथियों सहित संपूर्ण सेना जिस प्रयास में असफल होकर थक गई, उसी थकान और पीड़ा को मैं स्वीकार करूंगा अगर मुझे कुंगलीय कलयनार जैसी भक्ति और प्रेम भावना प्राप्त हो। तमिल में तिरुवल्लुवर ने कहा है, यदि परपीड़ा को स्वपीड़ा मानने का भाव न हो तो मानव का समस्त बुद्धि वैभव निरर्थक है। यही कुंगलीय कलयनार का आदर्श था। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radio's 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi. Presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vadhitamastu Mavidvishabahai ओम शांति शांति शांति। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तूटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम।
6: आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर सायंकालिक विशेष प्रवचन माला चल रही है विचार के लिए 11वां श्लोक। बटुर्वागेहि वा

భవసి భవభారం చ మహసి భటుర్వాగేహీ వా. ఆదిగురు భగవాన్ శంకరాచార్యజీ భగవాన్ శివ కి మహిమా కా వర్ణన్ కర్తే హై. బహుత్ లోగ్ యే కహతే హై కి భగవాన్ కి భక్తి బచ్చోం కో నహీ కర్నీ చాహియే. బహుత్ లోగ్ యే కహతే హై కి వేదాంత శ్రవణ బూఢే హోనే పర్ హీ కర్నీ చాహియే. బహుత్ లోగ్ కహతే హై కి వేదాంత తో సన్యాసియో కా విషయ హై, ఉన్కో ఉన్కో జిమ్మా లగా దో, కిసీ కో కహో కి వేదాంత శ్రవణ కియా కరో. तो बोले महाराज, हम तो गृहस्थी हैं, हमारे तो बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बहुत से जिम्मेवारियां हैं, आप लोग जैसे सन्यासी तो है नहीं भाई, हमसे कहते हैं लोग. तो यहां शंकराचार्य जी कल के श्लोक में ये बताया था, भगवान की भक्ति करने के लिए देह अर्थात अन्नमय शरीर, स्थूल शरीर, ये महत्वपूर्ण नहीं है. ऐसा नहीं कि शिव की पूजा, शिव की भक्ति, शिव की अर्चना केवल ब्राह्मण ही करे, ऐसा नहीं है. कोई भी कर सकता है, क्योंकि शिव भक्ति शरीर से नहीं हृदय से होनी है. देवता लोग ही भगवान शिव की आराधना करते थे, ऐसी बात नहीं है. उसके लिए देवता बनने की जरूरत नहीं है, राक्षस होकर भी भगवान शिव की भक्ति की जा सकती है, बशर्ते शरीर भले ही राक्षस का हो, हृदय राक्षस का न हो. क्या समझे? कई बार शरीर मनुष्य का होता है और हृदय राक्षस का होता है, होता है कि नहीं? उल्टा हो जाता है. संसार में ऐसे बहुत, आजकल तो मुझे लगता है सारे राक्षस मर के अभी मनुष्य होकर पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हृदय उनका राक्षस का है, दिखता है सही है. होना चाहिए था शरीर राक्षस का भले ही हो, हृदय विशुद्ध शिव भक्ति से भरा हुआ होनी चाहिए था. तो कल के श्लोक में बड़ा जोर लगाया गया, पशु हो जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पशुओं द्वारा शिव भक्ति किए हुए, भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति किए हुए हजारों उदाहरण हैं. पक्षी होकर भी भगवान की भक्ति किए हुए हजारों उदाहरण हमने दे दिया है, कीट पतंग होकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हो. शरीर महत्वपूर्ण चीज नहीं है, हमने कल संकेत कर दिया था. कोई कहते हैं महाराज महिलाएं स्त्री शिवलिंग का स्पर्श न करें, है? अब यह सर्वथा मूर्खता की बात है. पृथ्वी शिवलिंग है तो आप क्या करोगे? स्पर्श नहीं करोगे तो कहां जाओगे? पृथ्वी, पूरी पृथ्वी शिवलिंग है, क्या करोगे बोलो? तो स्पर्श न करें स्त्री तो कहां खड़े हो जाएं? कहां खड़े हो? आकाश स्वयं शिवलिंग है, क्या कर लोगे बोलो? क्या शिव स्पर्श नहीं होगा? तुमर कस्तुम सोम तुमसी पवनस्तुम उतवह. लियो जी, ये हवा है, पवन है, वो पूरा शिवलिंग है. आप लोग तिरुपति बालाजी तो बहुत गए होंगे, लेकिन श्रीकाल हस्तीश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया होगा, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि तिरुपति बालाजी वह आजकल के हिसाब से
वो सभी को पैसा बांटने वाले देवता हैं, खूब धान संपत्ति देने वाले देवता हैं। अब श्रीकालहस्तेश्वर महादेव तो बेचारे पकड़ हैं, है? इसलिए आप लोग नहीं जाते हो। तिरुपति बालाजी से 40 किलोमीटर चेन्नई की तरफ, मद्रास की सिटी, राजधानी की तरफ 40 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है श्रीकालहस्तेश्वर महादेव। वहां श्रीकालहस्तेश्वर महादेव की जो मंदिर है वहां कोई शिवलिंग नहीं है, वो मंदिर वायुलिंग है, वायुलिंग है। मंदिर भव्य है, बहुत विशाल मंदिर है। साउथ के मंदिर तो आप लोग जानते ही हो, देखा ही है, हर मंदिर बड़े बड़े विशाल होते हैं और मंदिर से भी गोपुर और भयंकर होते हैं। लेकिन वो विशाल मंदिर के अंदर जो गर्भगृह जहां शिव विग्रह रखा जाता है वहां कोई शिवलिंग नहीं, वहां हवा ही वहां शिवलिंग है, उसको वायुलिंग कहते हैं। अंदर एक बत्ती ज्योत जला रखी है, वो ज्योत हवा से जो हिलती है ना, वही हिलना, बत्ती का हिलना ही हवा है, वहां वायु है, हमेशा जलती रहती है, तो वायुलिंग के रूप में। तो पुराण में बताया, शिव महिमनि स्तोत्र में बताया, तुम पवन असि, ये हवा ही शिव है। तब महिला शिवलिंग स्पर्श न करे तब ये वायुलिंग का स्पर्श किए बिना कैसे बचोगे तुम लोग, बोलो है? अब आकाशलिंग है, अब आकाश का स्पर्श किए बिना तुम्हारा अस्तित्व कहां रहेगा? देखो, शरीर से स्पर्श हो न हो ये बात महत्व की चीज नहीं है, तुम्हारे भावना से स्पर्श है कि नहीं। कीटत्व का उदाहरण आया श्रीकालहस्तेश्वर के, मुझे ख्याल आ गया, वहां उसके इतिहास है। एक मकड़ी, मकड़ी होता है ना, जाला बनाकर रहता है, गुजराती में क्या करोड़ियो बोलते हैं, करोड़पति हो कि करोड़ियो पता नहीं, क्योंकि करोड़पति के भवन में भी रहता है ना वो, अरबियो कह दिया तो भी चलेगा क्योंकि अरबपति के यहां भी रहता है वो, हाँ। तो उसके इतिहास है, कहते हैं एक मकड़ी भगवान शिव को दिन में, कहते पहले मंदिर नहीं था, कहते जंगल था, तो दिन के समय में वो मकड़ी सुबह सुबह आए और पूरा ऊपर शिवलिंग के ऊपर जाला बनावे। तो किसी ने पूछा कि क्या करता है, बोले भगवान दिन भर धूप में पड़े रहते हैं, कोई छतरी लगाने वाला नहीं आता है, हमको 2 मिनट 10 मिनट धूप में खड़े होना पड़ता है तो कितना कष्ट होता है बेचारे, उनको कोई छतरी नहीं, कोई छाया नहीं, इसलिए भगवान को छाया बनाने के लिए छतरी लगा रहा हूं। इसलिए उसका नाम श्रीकालहस्ती। एक हाथी फिर नदी में जाता था, सूंड में पानी भर के लाता था और भगवान शिव को चढ़ाता था, फिर वह सूंड से जैसे पानी चढ़ाए तो वो बेचारा मकड़ी का बनाया हुआ छतरी सब टूटे, फिर मकड़ी दोबारा छतरी बनाने लग जाए। भक्ति करने के लिए शरीर मनुष्य का चाहिए ये मतलब नहीं है, मकड़ी के शरीर में भी उसका जो हृदय है वो तो वही है। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूं हृदय के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में हमेशा ये कह रहा हूं,
तुम लोग सत्संगियों को भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि पुनर्जन्म हुआ तो केवल स्थूल शरीर ही बदलता है, सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं। समझे कि नहीं? मान लो यहां जो शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे दूसरे जन्म में कौन से योनि की प्राप्ति होगी, ये वो महत्व की चीज नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन हृदय भगवान की भक्ति में चरण में लगा रहे, क्योंकि अभी हम मनुष्य हैं तो इस समय हमारा हृदय है, हमारे पास हृदय है। मान लो कि किसी काम, किसी कर्म और अविद्या, अविद्या काम कर्म पुनर्जन्म का हेतु है, वेदांत बार बार यही कह रहा है। अविद्या माने स्वरूप का अज्ञान, काम माने वासना, जन्म जन्मांतर की वासनाएं, कर्म माने शुभाशुभ कर्म, ये तीन के आधार में पुनर्जन्म होता ही रहता है, होता ही रहता है। और जब तक ये तीन वस्तु का बाध नहीं होगा, नाश नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा, तब तक पुनर्जन्म नहीं रुकता, तब तक पुनर्जन्म नहीं रुकेगा। तब मान लो कि अभी हम मनुष्य हैं, मनुष्य के योनि में रहते हुए हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, किसी कर्म वासना के चलते दूसरे जन्म में हमको मकोड़े का जन्म लेना पड़ेगा, तो सूक्ष्म शरीर वही होगा जो अभी है, यही होगा, सूक्ष्म शरीर बदलेगा नहीं है? और संस्कार भी यही होंगे जो इस शरीर में, इस समय सूक्ष्म शरीर में हैं। तो भगवान इतने ही कहते हैं कि वो अभी जिस तरह की आपके चरण कमल में मेरी भक्ति है, ये भक्ति किसी भी शरीर में मैं जाऊं, ये भक्ति यथावत बनी रहे, ऐसा नहीं कि जन्मांतर में वो विस्मृत हो जाए, वो बाधित हो जाए है? तो ये देह के प्रति महत्व न देते हुए हृदय के प्रति महत्व देकर ये श्लोक में शंकराचार्य जी ने ये कहा कि मुझे पुनर्जन्म से भी मुझे कोई दुख नहीं है। पुनर्जन्म होता है, हो जाओ, और पुनर्जन्म भी मनुष्य के प्रति राग भी नहीं है, पशु पक्षियों के से द्वेष भी नहीं है, शरीर जिस किसी का भी मिले। आपसे इतनी प्रार्थना है कि ये हृदय सतत आपके चरण की भक्ति करता रहे। अब यहां बोल रहे हैं, वेद का पूरा आधार ही वर्णाश्रम है, और आज उस वर्णाश्रम को तोड़ दिया गया, क्योंकि वैदिक सिद्धांत ही आज सभी ने तोड़ दिया। किसी को सब लोग कहते हैं तुम किस धर्म को मानते हो, किस शास्त्र को मानते हो, तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ क्या है, सब कहते हैं कि हम वेद को मानते हैं, सब कहते हैं हम वैदिक सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन वेद को मानते हैं, वेद का कहा कोई नहीं करता है, वेद को मान रहे हैं, वेद का कहा कोई नहीं मानता। वो ठीक इसी तरह कोई बच्चा बाप को मानता है, बाप का कहा नहीं मानता। कोई बच्चा मां को मानता है, मेरी मां है, मानता है, तू मानता है ये तेरी मां है, बोले हां मेरी मां है, मानता हूं, जानता भी है, बोले हां मेरी मां है, मैं जानता हूं। क्या मां का कहा मानता है? वो तो जरूरी नहीं है महाराज, मां को मानना जरूरी है, बाप को मानना जरूरी है, बाप का कहा मानना जरूरी नहीं है। ऐसे स्वतंत्रता ह्यूमन राइट्स आ गया आजकल है, क्या मानव अधिकार आ गया है, बाप को मानना है लेकिन बाप के मानना स्वतंत्रता होना चाहिए, बस कोई अनुशासन न करे। देख लो, वेद को मानो लेकिन वेद का कहना मानने की जरूरत नहीं है। तो यहां कहते हैं कि महाराज
वेद ने वर्णाश्रम की व्यवस्था की है। वर्णाश्रम में पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, चार वर्ण चार आश्रम, ये वेदानुशासन है। वेदानुशासन वेद ने व्यवस्था इस तरह मिलाई है मनुष्यों को। तो शंकराचार्य कहते हैं वटुर्वागे ही वा यतिरपि जटी वा तदितरो है? वटु यानी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कोई भी मनुष्य जब तक जीवन को चार भाग में बांटा है, वैदिक सनातन धर्म ने जीवन को चार भाग में बांटा, चार एक जीवन को चार भाग में जो बांटा है उस चार भाग का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। व्यक्ति यदि ये चारों आश्रमों को वैदिक विधि से दीक्षा पूर्वक आचरण करता है, अनुष्ठान करता है, तब जाकर वह वेदानुशासन को पूरा करता है। तो सामान्य आधार माना है 100 वर्ष की आयु। जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, प्रभ्रवाम शरदा शतम, अधीन श्याम शरदा शतम, भूयश्च शरद शता, 100 शरद। 100 शरद माने शरद ऋतु, 100 शरद ऋतु, यही सर्व 100 वर्ष। तो 25 वर्ष का जो आधार है जीवन का वो प्राइमरी पीरियड है। और वेद के अनुशासन है कि 25 वर्ष तक तुम एक से एक है भाई, हाँ एक से एक है, तो 25 वर्ष तक वेद का अनुशासन कि केवल तुमको और किसी चीज की चिंता ही मत करो, केवल वेद अध्ययन करो। ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ होता है, ब्रह्म का दो अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी होता है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि वेद के कहे अनुसार समग्र आचरण करना, वो ब्रह्मचर्य है। वेदानुगामी, वेदानुशासन को आचरण में लेना ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म माने वेद, वेद अध्ययन के अलावा और दूसरा कोई चिंतन न करो, या परमात्मा के अलावा और कोई चिंतन न करो है? और उसके बाद जब तुम्हारा आधार मजबूत होगा, स्वाभाविक ही है, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी हो उतने नीचे उसको बेस देना पड़ता है, उसका फाउंडेशन उतने ही गहरा उतने ही मजबूत बनाना पड़ेगा। और क्योंकि जीवन का जो बेस है प्रारंभिक, वो यदि परिपुष्ट, परिपक्व, परिमार्जित और शुद्ध होगा तो ब्रह्मचर्य आश्रम में खड़ा हुआ हुआ बाकी गृहस्थ आश्रम वो भी परिमार्जित होगा, परिष्कृत होगा, वो शुद्ध होगा, उसमें विकार नहीं आएगा। तब फिर वानप्रस्थ और संन्यास इस तरह चलता रहेगा। बट उर्वागे ही वा, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं जीवन का एक प्राथमिक क्षण चाहे वटु का क्षण हो यानी ब्रह्मचर्य अवस्था हो, जीवन का द्वितीय जो चरण है गृहस्थी ये ही, चाहे वो गृहस्थाश्रम का हो, यतिरपि जटी, यहां थोड़ा व्यतिक्रम कर लेना, जटी को
तीसरे क्रम में ले आना, यति को चौथे क्रम ले जाना। तो जटी अर्थात वानप्रस्थ आश्रम और यति अर्थात तुरी आश्रम, चतुर्थ आश्रम। संस्कृत भाषा में चतुर्थ ये शब्द को तुरीय कहते हैं। हा बटुर्वाग्ये ही वा, देखो जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं प्राय करके बटु ही ज्यादा भगवान के भक्त दिख रहे हैं। इतिहास पढ़ लो, है ना, प्रहलाद गिरस्त होने के बाद भक्ति किया कि संन्यास लेने के बाद भक्ति किया भगवान की, या वानप्रस्थी होकर भक्ति किया, ना गिरस्त होकर ना संन्यासी ना वानप्रस्थ। प्रहलाद की बात देख लो, बटु ब्रह्मचर्य आश्रम में ही भगवत भक्ति कर रहे हैं। ध्रुव की बात देख लो,

0: ऐसे कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। उद्धव को भी भगवान का भक्त ही मानते हैं, है ना? सख्य भक्त के अंतर्गत उद्धव का पहले नाम आता है, तो भक्तों में उद्धव सख्य भक्ति करने वाले हैं प्रधान। तब वो भी कोई गृहस्थ होकर नहीं कर रहे, ब्रह्मचर्य में ही कर रहे हैं। अनेक उदाहरण, नचिकेता देख लो, कितने उदाहरण हैं, है? नारद जी देख लो, अनेक उदाहरण हैं। आज के नारद को कहते हैं कि तुम भी भक्ति कर लो, तो बोले अभी तो उम्र बाकी है महाराज, बुढ़ौती में करेंगे। कर लिया बुढ़ौती में।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमना स्तोत्र इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री धर्मानंद जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: पर कई बार उससे भी बदनामी झेलनी पड़ती है, ऐसा होता है। एक बड़ा भारी विद्वान, बड़े अच्छे विद्वान थे, हमेशा वेदाध्ययन किया करते थे, गौशाला थी, गायें थी। उन्होंने एक ग्वाला को गाय चराने को लगा दिया। ग्वाला दूध निकाल के ब्राह्मणों को देकर गाय चराने के लिए ले जाता। एक दिन संजोग से उसी गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी रास्ते में पेड़ के नीचे बैठ के कुछ पाठ कर रहा था। इतने में क्या देखता है कि ग्वाला गाय को डंडे से प्रहार कर रहा। बेचारी गाय अपने बछड़े के वात्सल्य से गौशाला की तरफ आना चाह रही, और वह बार बार डंडे से उसका मुख जंगल की तरफ कर रहा। ब्रह्मचारी को राह दे गया, उसने ग्वाला को डांटा, उसके हाथ से लाठी छीन ली, कहा कि तू चले जा। वह चला गया और सीधे गुरुकुल आया और विद्वानों को कहा कि जो आपकी गायें हैं इनको मैं चराना चाहता हूँ, क्योंकि ये ग्वाला जो है ना गौ माता को बड़ा प्रताड़ित करता है, ये मुझसे सहन नहीं होता है। मैं निस्वार्थ गौ माता की सेवा करूंगा, मुझे शुल्क भी नहीं चाहिए, बस केवल मुझे आप लोग भोजन दे देना। विद्वान ब्राह्मण बहुत खुश हो गए। हर दिन वह गायों को जंगल में ले जाता, चराता, खाज करता, पानी पिलाता। इसके बाद जब गायें बैठ जाती तो स्नान करके भगवान शंकर की पूजा करता। गाय इतनी प्रसन्न इससे रहती थी कि जरा सा गायों के पीठ पर खाज करता कि अपने आप गायें दूध देना शुरू कर देती, दूध भी बहुत होने लगा। ब्राह्मण और भी खुश हो गए। तीन चार वर्ष के बाद वही ग्वाला अवसर पा करके शिकायत किया कि वह जो ब्रह्मचारी गौ चराने गायों को ले जाता है, वह जंगल में दूध निकाल करके और उसका दुरुपयोग करता है, कुछ बेच देता है, कुछ शिवलिंग के पिंडी पैसे बहा देता है। ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया कि हमारे सामने तो बहुत भक्ति करता है कि मैं निस्वार्थ गौ माता की सेवा करूंगा, और उधर जो है दो नंबर काम शुरू कर दिया, दूध निकालता है और शिवलिंग के पिंडी पर डालता है, इधर उधर करता है। तुरंत ब्रह्मचारी के पिता को बुलाया और डांटा कि तुम्हारा बेटा बड़ा भारी अधर्म कर रहा, चोरी कर रहा, हमारे यहाँ भक्ति करता है, निस्वार्थ सेवा कर रहा, वहां जो है दूध निकाल करके सप्लाई करता है, मंदिरों में भेजता है, शिवलिंग की पूजा करता है। पिताजी ने कहा कि जरा हमें देखना चाहिए कि हकीकत क्या है। पिता जो है चुपके से पीछे पीछे जंगल में गया और एक पेड़ के ओट में छिपके देखने लगा कि क्या करता है। पिता ने देखा कि जब गाय

जो है पानी पीकर आराम से बैठ जाती हैं, तो हमारा लड़का स्नान करता है, स्नान करने के बाद गायों को खड़ा करके खाज करता है और गाय पात्र में दूध अपने आप भर देती है। इसके बाद उस दूध को मंदिर में ले जा करके भगवान के पिंडी पर चढ़ाता है एक एक घड़ा। पिता को बहुत क्रोध आया, ये बड़ा जो है अनर्थ कर रहा है। तुरंत एक बड़ा भाई डंडा लाया और डंडा ला के सोचा कि मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, लड़का जवान है, सीधा मारूंगा तो कैसा न मुझे ही मार दे। सोचा कि पहले इसको बैठ जाने दो। जैसे ही वह ब्रह्मचारी दूध चढ़ाने के बाद स्तोत्र पाठ करके ध्यानस्थ हो गया, बैठ गया, सोचा कि अब इसकी खबर लेनी चाहिए। बड़ा भाई डंडा ले गया और चार पांच डंडे मार दिया, आंख खोला। पहले तो इसको आश्चर्य हुआ कि हमारे पूजा विघ्न कौन खड़ा कर रहा। उसी डंडे से ऐसा प्रहार किया पिता के पैर पर कि पिताजी का पैर ही कट गया, बेहोश गिर पड़े। जब देखा तो उसके पिता, इसको बड़ा दुख हुआ कि हमारे पिताजी मैंने पहचाना नहीं, क्रोध में मार डाला। तुरंत भगवान शंकर वहां दर्शन देते हैं और उसके पिता को समझाते हैं कि देख, ये हमारी प्रेरणा से सत्कर्म कर रहा था, तुझे भ्रम हो गया। तो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम दूसरे के कहने में आ जाते हैं और आ करके ऐसा वहम हो जाता है ना कि बिना विचारे ही प्रतिक्रिया करते हैं। और अक्सर जहां पर भी विवाद मतभेद होता है 99% तो केवल वहम होता है, भ्रम होता है। बिना हम सच्चाई का जांचे पड़ताले जब कार्रवाई करते हैं तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। तो यहां पर भी भगवान शंकर तो जगत की प्रसन्नता के लिए तांडव नृत्य करते हैं, परंतु तमाम लोगों की दुर्स्थिति बन जाती है। इसलिए पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं कि वाम नटसी वामय विभूता, आपका तांडव नृत्य है जगत की रक्षा के लिए, परंतु विपरीत यहां पर अवस्था बन जाती है। तड़ी आघाते से तांडव बनाया, जैसे कि माता पिता बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं कि भाई तू पढ़ा कर, उस डांट फटकार के पीछे है बच्चे की सुरक्षा, हित कल्याण है, पर बालक समझ नहीं पाता है। छोटे बच्चे के जब कपड़े निकालती है माँ तो बच्चे रोने लग जाते हैं, उन्हें पता नहीं कि माँ नहा धुलाकर नया कपड़ा पहनाने जा रही। हम लोग उससे भी अज्ञानी है ज्यादा। जैसे कि जब तक धान का छिलका नहीं निकालेंगे तब तक चावल नहीं निकलेगा, उस पर आघात करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर भी जो जीवात्मा के ऊपर ये आवरण है, अविद्या का, वासना का, कामना का, ये आसानी से जब नहीं छूटता है तो भगवान शंकर को तांडव करना पड़ता है। तांडव के आघात से ये पत्थर भी पिघल जाता है। जैसे पूज्य अखंडानंद महाराज का हम लोग कैसे सुन रहे थे ना कि जिसके हृदय में भगवान के चरित्र के प्रति प्रीति नहीं है, स्नेह नहीं है, श्रद्धा नहीं, वह हृदय हृदय नहीं बल्कि पाषाण है। तो भगवान शंकर पाषाण को भी सीधा करने जानते हैं तो आघात करते हैं, और उसी आघात से ये जीव का जो ये पंच मल है ये मल छूटता है। और जब मल दूर होता है तब जाकर ये अपने स्वरूप की पहचानता है। तो तांडव नृत्य करने के बाद तब जाकर के ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। अब उसको भी देख ले, हम लोग उच्चारण कर लें।

0: जब उन मलों का नाश हो जाता है जो ज्ञान के प्रतिबंधक है, जैसे दीवाल बाहर के दृश्य दर्शन का प्रतिबंधक है। बाहर के दृश्य का दर्शन तभी हो सकता है जब दीवाल रूपी प्रतिबंधक हटे, या हम दीवाल को तोड़ें या दीवाल के बाहर जाएं, दो ही उपाय है। ऐसे ही ज्ञान का जो प्रतिबंधक मल विक्षेप आवरण है, वेदांत के अनुसार, सांख्य के अनुसार है कि प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान नहीं होना। सैवागम के अनुसार पंच ये जो मल है ये कारण है, आलोम मल इत्यादि। इन प्रतिबंधकों को हटाने के लिए जब भगवान शंकर ने तांडव का आघात किया, उस आघात से जीवात्मा को पहले बहुत पीड़ा होती है। जैसे जब आप घर से यहाँ चलते हैं ना तो बहुत पीड़ा लगती होगी, लोग कहते भी होंगे कि ये प्रेम पूरी क्यों रोज रोज जाते हो, क्या तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, इतने दिन से जा रहे हो। लोग व्यंग भी करते हैं, ताना भी मारते हैं कि आराम से सोने भी नहीं देते, स्वयं सोते भी नहीं। अब आप मान लो छोटे से फ्लैट में है, 10 लोग रहते हो, यदि आपको प्रेमपुरी आना है तो 4 बजे उठना पड़ेगा। अब 4 की अलार्म की घंटी लगाएंगे तो बाजू वाले को तकलीफ होगी, घंटी बजेगी। परंतु आपको निश्चय है कि हमें पहुंचना ये 7:30 बजे, तो आप हर तरह की तकलीफ को सहन करके अपने मित्रों की बात भी सुनते हैं, घर वालों के भी सुनते हैं, क्योंकि उन्हें तो 8 बजे उठना है, आपको उठना है 4 बजे। व्यवहारिक जीवन में तो सारे लोग साथ देंगे, यदि कहीं नाच गान तमाशा देखने जाना हो ना, बोलेंगे हम भी चलते हैं। परंतु प्रेमपुरी आना हो, ज्ञान गंगा में स्नान करना हो, तो वहां सब कन्नी काट लेते हैं। यही आघात है। आप शारीरिक सामाजिक हर तरह के आघात को सहन करके, उससे बड़ा है तकलीफ मन को मारना। ये मणिराम भी कई बार कहता है कि क्या करने, एक दिन ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दिन ही जाएंगे तो क्या होगा। पर भोजन के लिए आप कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, एक दिन भोजन नहीं करेंगे, आज अच्छा शिवरात्रि का दिन है या नवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाए, कोई सोचता कभी? बिल्कुल ठीक टाइम पर होना चाहिए, नहीं होगा तो विक्षेप। स्वयं जो है भागवत में आता है, पीबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत के रस को कब तक पीना चाहिए, तो कह दिया आलयम। आलय मतलब कि लय पर्यंत, जब तक कि शरीर में प्राण है तब तक। और लय शब्द का दूसरा अर्थ है कि आत्यंतिक लय। लय जो है ना 4 तरह से होता है, एक तो है नित्य, दूसरा है नैमित्तिक, और तीसरा है प्राकृतिक, और चौथा है आपका आत्यंतिक प्रलय। नित्य लय सुसुप्ति है, सुसुप्ति न आए तो आप जागृत का आनंद नहीं उठा सकते, कोई व्यवहार नहीं कर सकते। नित्य लय जो सुसुप्त है, इस लय में जाने के बाद जो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, तभी जाकर के हम लोग जागृत के व्यवहार को संपादित कर पाते हैं। दूसरा है आपका नैमित्तिक लय, ब्रह्मा जी के दिन रात्रि के कारण से लय होता है। तीसरा है प्राकृतिक लय, जिसमें कि समूचे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, यह है प्राकृतिक। जो तीसरा आपका प्राकृतिक है, या जो दूसरा आपका नैमित्तिक है, इस लय के बाद भी संसार भाव की प्राप्ति होती है। जब तक कि हम आत्यंतिक प्रलय का अनुभव न कर लें, आत्यंतिक लय है मोक्ष, और यह होता है तत्व ज्ञान से। यदि तत्व ज्ञान हो गया तो हमेशा के लिए आनंद ही आनंद है। इसलिए कह दिया पिबत भागवतम रसमालयम। जब तक आत्यंतिक प्रलय का अनुभव न हो जाए, ये लोग घबराते हैं ना लय से। लय मतलब कि समझो कि आत्म विगलन, मय का गलना, मय का मरना, मय का समाप्त होना, यही लय है। सुषुप्ति में मय संपूर्ण रूप से विगलित हो जाता है। आप यह पता नहीं होता है कि मैं सोया हूं। यदि इतना भी ज्ञान हो कि मैं सोया हुआ हूं तो भी सुषुप्ति नहीं आएगी। संपूर्ण रूप से अपने सीमित अहंता का, अभिमान का, मैं पने का विसर्जन ही सुषुप्ति है, वही आनंद है। पर यह जो है नित्य हो रहा है, प्रारब्धानुसार होता है, परंतु जो आत्यंतिक विलय है हमेशा के लिए, मय का जो विसर्जन है, उसके विसर्जन से आप परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। तो तब तक भगवत संबंधी चर्चा सुनना सुनाना चाहिए। स्वामी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। संसार में रहते हुए भी किस प्रकार से हम आनंद का अनुभव करें, इस सूत्र दिया भगवान ने कि मच्चिता मदगत प्राणा। अपने चित्त को, प्राण मल्ल की कर्मेंद्रियों को मुझ में समर्पित कर दो, और बोधयंतः परस्परम, परस्पर उसी आत्मा की चर्चा करे, भगवान की लीला का चर्चा करे। इससे फायदा क्या होगा? लोग फायदा कहते हैं ना, फायदा क्या होगा? कोई भी काम करने के पहले सबसे पहले हम पूछते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि तुष्यन्ति च रमन्ति च, परम संतोष और परम आनंद की उपलब्धि होगी। हमारे पास अथाह धन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी संतोष नहीं होता है, क्योंकि संतोष का सूत्र है भगवत चर्चा, और इसको तब तक करना जब तक कि आत्यंतिक लय की अनुभूति न हो जाए। और जब तक अनुभूति न हो तब तक करते रहना चाहिए। बीच में छोड़ देंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जैसे मान लो आपको प्यास लगी है, कुआं खोदना है, थोड़ा यहां गड्ढा किया, थोड़ा वहां किया, थोड़ा यहां किया, जल निकलेगा कहीं से? नहीं, बल्कि परिश्रम बेकार जाएगा। जब आप एक ही जगह तत्परता से खोदते जाएंगे तो निश्चित जल की प्राप्ति होगी। ऐसे हम लोग क्या सोचते हैं कि जरा जो रूप से आनंद आ जाए, रस से, गंध से, स्पर्श से, जरा दुनिया का भी आनंद ले लें, दुला इधर का भी, तो नहीं होगा। आप तत्परता से यदि कोई नियम लेते हैं भगवत चर्चा की, तब तो सफलता है। और यदि आप भगवत चर्चा नहीं करेंगे तो इसके व्यतिरिक्त दुनिया की चर्चा जबरन होगी। आप नहीं चाहेंगे तो भी होना ही होना है। आप कितना भी संकल्प कर लें, प्रतिज्ञा कर लें कि हमें अनात्म चर्चा नहीं करनी है, फिर भी होगी। आप करके देखना। आप कमरे बंद, कमरे में जो है दरवाजा खिड़की बंद करके, लाइट बंद करके बैठ जाना, ये मणिराम शुरू कर देगा। बहुत पुरानी पुरानी बातें जिसका कोई संबंध नहीं, और कई बार तो क्रोध भी आता है, कभी कभार हमें भी होता है, मतलब साल में 2-4, 10-20 दिन होता है जब खाली होते हैं ना, तो जब सोचते हैं तो पुरानी से पुरानी बात याद आ जाती है। और क्या होता है कि हमें ऐसा उस समय कहना था, ऐसा करना था, जो बात बीत गई उसकी याद करने से क्या फायदा। पूज्य प्रातस्मरणीय खन्ना जी महाराज कहा करते हैं कि मनुष्य या तो भूत में चक्कर काटता है या भविष्य में, वर्तमान में तो बिरले होते हैं। भूत मतलब कि 20 वर्ष पहले ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, भविष्य मतलब कि आगे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये वर्तमान तो अपने हाथ से निकल रहा है। ये जो आज का तारीख है 6 दिसंबर है ना, 6 दिसंबर 2008, इसको कोई नहीं पकड़ रहा। कितने बढ़िया भगवत चर्चा हो रही है, ऊपर भागवत कथा कुछ जोधा जी की हो रही है, कुछ किसी को ध्यान नहीं। परंतु हम 10 वर्ष आगे की बात करते हैं, जिससे मैं न्याय प्राप्त करता था काशी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के न्याय विभाग के अध्यक्ष थे वशिष्ठ त्रिपाठी। ये बार बार कहा करते थे कि जहां पाठ चलता है ना वहां बुद्धि लगाओ तो समझ में आएगा। ये 2 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर पीछे लगाने से पंक्ति नहीं लगेगी। वो हमेशा जब क्रोध करते थे डांटते थे तो यही बोलते थे कि जहां पाठ चल रहा स्वाध्याय सत्संग वहां दिमाग को लगाओ। और होता क्या है, विद्यार्थी का पीछे की बात याद करता है या दो किलोमीटर आगे का, तो जो चल रहा वो भी निकल जाता है, वही हम करते हैं। इसलिए भगवान ने सावधान कर दिया कि तत्परता से करे और सातत्य ने करे। भगवान पतंजलि जी ने योग दर्शन में लिखा है कि 3 वहां बात बताई, सातत्य, दीर्घ काल और नैरंतर्य। कोई भी काम सातत्य न हो और दीर्घ काल हो, आदर बुद्धि हो, तब जाके दृढ़ भूमि होगी, वह परिपक्व होगा। जैसे मान लीजिए सत्संग सुनते हैं तो सत्संग में भी दीर्घ काल हो, इसके बाद निरंतरता हो, और तीसरी कसौटी है आदर बुद्धि। आदर बुद्धि नहीं है तब भी बात समझ में नहीं आएगी। तो आदर मतलब श्रद्धा विश्वास हो, निरंतर हो, और इसके बाद दीर्घ काल, तब जाकर वह चीज परिपक्व होता है। आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं उसके लिए भी बड़ा हमें आदर करना पड़ता है, श्रद्धा रखना पड़ता है। किसी सेठ से मान लो पैसा निकलना हो तो कितनी श्रद्धा करनी पड़ती है, जीअरी करनी पड़ती है, हर बात सहना पड़ता है। ऐसे ही ठंडी गर्मी बरसात या जो भी समाज की अव्यवस्था व्यवस्था है उसको भी झेलना पड़ता है, मन को भी संयमित करना पड़ता है, तब जाकर के भगवत चर्चा मन लगता है। देखिए संसार में 2 ही चर्चा हो सकती है, आत्म चर्चा अनात्म चर्चा। अनात्म चर्चा करेंगे तो अनात्म चर्चा के पास जो है वही मिलेगा आपको। किसी सोनार के पास जाएंगे तो उसके पास सोने के आभूषण है, सोने के आभूषण उपलब्ध होंगे। और किसी पंसारी के पास जाएं तो उसके पास राशन पानी वही देगा। इसी तरह से अनात्मालय के पास दुख है, अनित्यत्व है, परिवर्तनशीलता है। तो अनात्म चर्चा करेंगे तो निश्चित ही दुख हासिल होगा, और आत्म चर्चा करेंगे तो आत्मा है सचित आनंद, उसकी उपलब्धि होगी। ऋषिकेश में ब्रह्म प्रकाश जी अच्छे संत हो गए, उनके पास कोई भी आए और जरा सा भी चर्चा करे तुरंत बोलते थे कमरे से बाहर चलो। सीधा उनका नियम था कि कोई गीता के चर्चा करे, उपनिषद का, भागवत का, तब तो घंटों बैठे रहे। पर जरा जहां स्पीकर लगाया अपने घर का, बोले चलो यहां जरूरत नहीं, यहां मुझे सुनना नहीं। और अपने कैलाश के जो 6वें मनेश्वर हो गए ना, सौराष्ट्र के थे विष्णु देवानी महाराज, उनका तो बड़ा कठोर नियम था मनेश्वर बनने के बाद भी कि कोई भी किसी की निंदा नहीं कर सकता। वे बोला करते थे कि कोई किसी की शिकायत करे, निंदा करे, तो 50% तो उस शिकायत करने वाले का दोष मैं मानता हूं, ऐसा बोलते थे। अब 50% है, 50 में से 25 तो हमारा है जो कि दुर्भाग्य से मैं सुन रहा हूं, इतना भागा। हम लोग सुबह सुबह बोलते ना, भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा, कानों से बढ़िया सुनना तो फालतू शिकायत निंदा चुगली सुन रहे, और 25% तो जिसके विषय में कह रहा वह पता नहीं है कि नहीं, संशयास्पद है, पर 75% तो कन्फर्म पक्का है। इसीलिए वो किसी भी शिकायत को सुनते नहीं थे। वो बोलते थे कि संसार त्रिगुणात्मक गुण दोष से बना है, परिपूर्ण केवल एक भगवान ही है, इंसान परिपूर्ण कभी हो नहीं सकता है, सब में कमोन बेसी गुण दोष रहते ही है, तो क्यों किसी का दोष सुनना, सुनना है तो गुण सुनो। यदि आप किसी का दोष बार बार सुनेंगे तो वह भी आपके अंदर आ जाता है, और किसी के लिए अच्छाई सुनेंगे तो अच्छाई आती है। इसलिए पूज्य बड़े महाराज उनको बोला करते थे, विष्णुदेवानी महाराज, उनका ये नियम था कि हमेशा आत्मचर्चा करना, इसी को भगवान ने कहा परस्परम बोधयंता, जब भी चर्चा करे तो आत्मा की चर्चा करे, जब आत्मा की चर्चा करेंगे तो जीवन हमारा अमृत में सराबोर हो जाएगा। और संसार की कथा करके आप लोगों ने अनुभव किया होगा भाई, शब्द गुण है आकाश का, न्याय दर्शन का सिद्धांत है, शब्द गुण कम आकाश, शब्द गुण है आकाश का, जैसे फूल में सुगंधी गुण है, जहां फूल होगा वहां सुगंधी पना होगा, तो आकाश व्यापक है तो आकाश का गुण भी व्यापक है। तो किसी के विषय में हम कितना भी छिपकर कुछ बात कहेंगे ना तो निश्चित घूम फिर कर पहुंच जाएगा वहां, फिर खटपट शुरू हो जाएगा। इसीलिए किसी की अनात्म चर्चा ही नहीं करना। अच्छा, आत्म चर्चा करेंगे तो चूंकि आत्मा भी व्यापक है, सर्वत्र आत्मा को समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं, आकाशवत व्यापक नित्यश्च, तो आत्मा भी व्यापक है, आत्मा की चर्चा करेंगे तो निश्चित वहां से हमें सुख शांति की उपलब्धि होगी। अब चयन करना आपका है, साथ तो बदला दिया ना कि चाहे आप आत्म चर्चा करो चाहे अनात्म चर्चा करो। यदि आपको दुख चाहिए तो सीधा अनात्मालय खुला हुआ है संसार, और सुख चाहिए तो स्वनाम धन्य पंचम पीठाचार्य प्रेमपुरी जी महाराज ने आत्मालय खोल दिया है प्रेमपुरी आश्रम। हमारे बीस भाई बोलते हैं ना हर दिन कि विश्व बने प्रेमपुरी, ये प्रेम जो है ना आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, स्वभाव है, तो हमें चुनाव करना है। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन तैत्तिरीय उपनिषद प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री आनंद नंदजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: वही उसे जान सकता जिसे वह जनवाता, लेकिन वो जनवाता कब है? जब रुचि हमारा झुकाव उधर हो, हमारा झुकाव किधर है। इसलिए चाहे इस रूप में कहें या इसी को जो संकेत किया था कल, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, संयतेन्द्रिया तत्परा श्रद्धावान ज्ञानम लभते। कौन? तो कहा संयतेन्द्रिया और तत्परा श्रद्धावान ज्ञानम लभते। संयतेन्द्रिय का मतलब क्या है? संयतेन्द्रिय इंद्रियों का संयम, इतना सीधा अर्थ हो गया। इंद्रियों का संयम क्या है? इंद्रिय आंख है तो आंख को बंद करना ही क्या इंद्रिय का संयम? कान को बंद कर लेना क्या इंद्रिय, कानों का इंद्रिय रूप संयम? मुख को वाणी को बंद कर लेना क्या इसका संयम? और आप जानते हो एक कथा भी आती है, महात्मा गांधी जी के पास में एक यूनानी दार्शनिक ने तीन बंदरों की मूर्ति बना करके है, और एक जो है आंखों पर हाथ रखे, कान पर हाथ रखे, एक मुख पर हाथ रखे, और ऐसा जो है और उसने पत्र लिखा कि ये बतलाओ कि ये बंदर जो है क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं, आंख बंद करके ये क्या कहना चाहता है, और कान बंद करके ये क्या बतलाना चाहता है, मुख बंद करके ये क्या बतलाना चाहता है। और गांधी जी ने भी उसका उत्तर दे दिया। गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? कि जो मुख बंद किए हैं वो कह रहा है कि मैं किसी की बुराई कहना नहीं चाहता, कान बंद किए हैं वो कहता है कि मैं किसी की बुराई को सुनना नहीं चाहता, और आंख बंद किए हुए है वो कहता मैं किसी की बुराई को देखना, ये कह दिया और उत्तर हो गया। लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाए तो ये उत्तर को वो समीचीन मानेंगे? वो कहेंगे उत्तर हो गया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये उत्तर अभी अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कि ये उत्तर जो है अभी अधूरा है। वही जब तक तुमने देखा ही नहीं तो कैसे पता चला कि ये बुरा है ये भला है? तुमने शब्द को सुना ही नहीं तो कैसे पता चलेगा ये शब्द मीठा है ये शब्द कड़वा है, ये शब्द बुराई करने वाला ये शब्द क्या है प्रशंसा करने वाला, पता कैसे चलेगा? और बाणी से बोल करके ही है तो पता लगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल ये तो अधूरा है, किंतु क्या करना है? इंद्रियों का संयम क्या है? भगवान ने क्या किया? इसलिए एक इंद्री नहीं दी, कहा एक फेल हो जाए तो दूसरी से काम ले लूं है। एक कान नहीं दिया, दो कान दिए, एक है और ऐसे ही नासिका में भी दो छिद्र बनाए। तो भगवान ने एक की जगह दो दो, एक से काम चल सकता था, लेकिन एक एक न करके डबल डबल दिया कि कहीं पर एक में त्रुटि आ जाए तो दूसरे से काम निकाल लो। और क्यों? ऐसे बढ़िया साधन देकर के और क्या फल बतलाया? कि तुम सही ढंग से देख सको, सही ढंग से सुन सको, सही ढंग से निर्वचन कर सको, और इसके लिए अंतःकरण आदि भी सब दे दिए। किस लिए दिए? कहा कि कहीं पर भी तुम भ्रमित न हो जाओ, कहीं भटक न जाओ, इसलिए सुंदर साधन दे दिए। लेकिन वो सुंदर साधन किस लिए? ये विशेषता मनुष्य की ही है, इसलिए मनुष्य के अंदर ही दुर्लभता बतलाई, क्योंकि मनुष्य ही देख करके वस्तु का परीक्षण कर सकता है, सुन करके परीक्षण कर सकता है, और परीक्षण करके क्या सत्य है क्या असत्य है इसका निर्णय ले सकते, क्या हमारे लिए श्रेयस्कर है और क्या हमारे लिए है प्रिय मात्र है। इसलिए श्रुति ने कहा भी, क्या कहा? मनुष्य के लिए ही कहा। ये कहने लगे श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेता तौ संपरीत विविनत धीर हो। लेकिन संकेत कर दिया, समस्या क्या है? कहने लगे दो चीजें इस मनुष्य के लिए हैं, दो मार्ग हैं, चाहे इस मार्ग पर चला जाए चाहे इस पर चला जाए, लेकिन दोनों मार्गों में जाने से पहले करना क्या है? यदि कल्याण चाहता है तो उसे विचार करना होगा, देखना होगा, परीक्षण करना होगा, और यह सामर्थ्य परीक्षण की किसमें है? मानव थे। और परीक्षण करे, लेकिन परीक्षण भी कौन कर पाएगा? जिसकी रुचि हो, और रुचि के साथ साथ में फिर रुचि के साथ साथ जोड़ दिया कि धैर्य भी हो। जब तक जीवन में धैर्य नहीं होगा, धैर्यशाली व्यक्ति ही परीक्षण करते हुए सफल होता है, और जो धैर्यशाली नहीं है वो परीक्षण करके भी असफल ही हो जाता। तो परीक्षण करने के लिए सुंदर साधन भी दे दिए और कहा कि तुम परीक्षण करने में समर्थ हो, और परीक्षण करके धैर्य पूर्वक जो है अपने मार्ग का निर्णय ले लो। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतः तौ संपरीत विविनत धीर। फिर रुचि अपनी लगाओ, पहले निर्णय ले लो, और निर्णय लेकर के फिर अपनी रुचि उसमें लगाओ, और वही रुचि तुम्हारी श्रद्धा बन जाएगी, श्रद्धा बन जाएगी तो उसकी तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। ये तात्पर्य। अब जो है संकेत किया कि परीक्ष तो परीक्ष लोकान कर्मचितान, ये सब संकेत वहां भी कर दिया और यहां पर भी कह रहे, तो परीक्षण करना। अब मोटी भाषा में ले लू, किसी व्यक्ति को शुगर हो गया, शुगर क्या है? एक प्रकार रोग है, लेकिन शुगर रोग ही नहीं है। रोग क्यों कहा उसे? रोग इसलिए कहा कि हमारा जो रक्त है उस रक्त में शुगर विद्यमान है, और वह जो शुगर जो है वो हमारे अवयवों के लिए उपयोगी है, लेकिन वह रक्त क्या कर रहा है? अब वो हमारे अंगों में, हमारे अवयवों में, हमारी मांसपेशियों में, हमारे मस्तिष्क में उस चीनी को पहुंचाने में वह रक्त समर्थ नहीं। ध्यान देना, वह रक्त उस चीनी को हमारी मांसपेशियों, हमारे अंगों में, अवयवों में पहुंचाने में असमर्थ हो गया, यही है शुगर रोग। लेकिन प्रत्येक अंग को उस चीनी की आवश्यकता है, उस तत्व की आवश्यकता है, और वो रक्त के सर्कल के द्वारा ही जो है वो प्राप्त होती, लेकिन रक्त में ये असमर्थता आ गई, उसे पहुंचा पाता नहीं, तो क्या कह दिया? यही रोग कह दिया। अब जब जो है जिसको शुगर रोग होता है तो उस शुगर रोगी को क्या होता? मीठा खाने की बड़ी है रुचि होती है, इच्छा होती। अब जो है मीठा सामने आता, पार्टी में गया, किसी फंक्शन में पहुंचा, अब है तो शुगर, डॉक्टर ने तो कह दिया कि भैया आपको चीनी बिल्कुल नहीं खानी, कड़वे करेले जो है ना, कड़वे करेले खाने। ओ, देखता है तो पानी आ जाता मुंह में, तो सोचता है क्या, चलो आज खा लेते हैं, एक इंसुलिन और ले लेंगे, हैं? और खा लेता। अब ये क्या हुआ? प्रिय क्या है? जो वस्तु हमें प्रिय लगती है, प्रिय शब्द का ही प्रिय शब्द बना, तुलनात्मक अर्थ बतलाने, जो वस्तु हमें अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, वो हो गया प्रिय। और जो वस्तु हमारे लिए प्रशस्त है, कल्याणकारी है, वो हो गया श्रेय। अब वहां पर जब सामने ऐसी स्थिति आई, उसने देखा तो अब जो है देख रहा है और उसके गुणधर्मों को जान भी रहा है। ये मनुष्य के अंतर्गत है, ये सब दिया उसे, लेकिन कर क्या रहा है, उसके अंदर धैर्यता है कि नहीं। श्रेय और प्रेय का निर्णय लेना दो मार्ग है उसके जीवन, लेकिन यदि वह केवल अच्छा लगता है मीठा और इसलिए जो है चलो एक इंसुलिन और ले लेंगे और लेके खा लेता है तो क्या होगा, कष्ट को प्राप्त होगा, उसे आगे क्या होगा, कष्ट मिलेगा। लेकिन वो उसने निर्णय ले लिया, धैर्य उसके अंदर कि ये जो है ये हम शुगर को खाते हैं, इसका मीठा को खाते हैं तो हमारी शुगर बढ़ जाएगी और शुगर बढ़ जाएगी तो हमें कष्ट होगा, इसलिए ये हमारे लिए उपादेय नहीं। तब क्या करता, तो वो चयन करता है करेले की सब्जी उठा के खाता, कड़ुए को खाता, क्योंकि वो जानता है कि इसके अंतर्गत प्रशस्तता है, श्रेयता है, ये हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद है और ये हमारे लिए हानिकारक। तो किसका अनुपण करेगा, तो करेले के, और अच्छी लगने के कारण यदि खा ली तो प्रेय का वर्णन हो गया। किसका वर्णन हुआ, प्रेय का। केवल अच्छी वस्तु लगती है इसलिए मैं ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन वो वस्तु क्या हानि करेगी, क्या लाभ करेगी, और ये विचार यदि नहीं किया तो वही अधैर्य हो गया। तो ऐसे ही ये तो उदाहरण, मनुष्य के जीवन में भी दो मार्ग। अब यद्यपि एक विचार और करना, वह उस मीठे को खा करके भी करना क्या चाहता, अपने को सुखी करना चाहता, लेकिन जानता है कि इस सुख को हम प्राप्त करेंगे, क्षणिक सुख तो मिलेगा, जीवा का सुख तो मिल जाएगा, लेकिन फिर बाद में कष्ट मिलेगा, ये जानता है। तो अब सुख की कामना से ही कर रहा, और वैसे ही मूल में जो बात कही थी वेद भी उसी को कहता, प्राणी मात्र क्या है, तो अमृतस्य पुत्र, क्या है, अमृत का पुत्र। इसलिए अमरता उसका स्वाभाविक धर्म है, अमरता उसका स्वाभाविक, इसलिए प्राणी मात्र चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, मैं शाश्वत बना रहूं, मेरा अभाव न। और दूसरा मार्ग है क्या, दो मार्ग हैं उसके सामने, हमेशा संकल्प और विकल्प, वैसे ही दो मार्ग जो है, तो एक तरफ तो अमरता का मार्ग है और दूसरी तरफ मृत्यु का मार्ग। अब आप दो मार्ग हैं, आप यदि धैर्यवान हैं, धीर पुरुष हैं, तो आप जो है किसका वर्णन करेंगे, अमरता का वर्णन करेंगे और मृत्यु का वर्णन नहीं करेंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि केव मृत्यु से हम रहित कैसे होंगे, मृत्यु के मार्ग से कैसे निवृत्त होंगे, तो उसके लिए कह दिया परीक्षा लो, माने अच्छी तरह से उसका परीक्षण कर लो, दो ही हैं, तो दोनों में देख लो कि श्रेयकर कौन है और प्रियकर कौन है, संकेत कर दिया। अब जब जो है संसार के पदार्थ, संसार की वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन जितने भी पदार्थ संसार के हैं वो सब कैसे, सबकी आयु निश्चित है, सब एक सीमा में बने हुए हैं और सब जो है नाश। जब सब नाशवान है तो हमें प्रिय तो लगते हैं, वो तात्कालिक हमें सुख तो दे सकते हैं, लेकिन है दीर्घकालिक सुख भी वो दे सकते हैं, फिर अक्षुण सुख तो कहां से दे सकते, जिनमें स्वयं छड़कता है, जो स्वयं नाशवान है, वो हमें अविनाशी और जो है अस्थाई है सुख, स्थाई सुख कैसे दे सकते हैं। तो यदि संसार के पदार्थों में ही हमारी रुचि है तो समझ लो हमने प्रेय का वर्णन कर लिया और जो है श्रेय का वर्णन नहीं कर पाए। अब श्रेय का वर्णन नहीं करोगे, चाहोगे श्रेय तो श्रेय मिलने वाला नहीं, तो तुम्हारी रुचि भिन्न चली गई। जिस मार्ग में रुचि जानी चाहिए, जिस तत्व में रुचि जानी चाहिए, जिसका औपनिषद जहां संकेत कर रही है, तो उसमें रुचि ही नहीं हुई, और रुचि जब नहीं होगी तो फिर गति कैसी होगी आगे, तो पहले तो रुचि ही काम आती। तो इसलिए संकेत किया कि तो एक जो है अमरता का मार्ग, दूसरा जो है मृत्यु का मार्ग। तो हम यदि मृत्यु से रहित होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कहा अमरता के मार्ग को ग्रहण करना, चाहते तो सब हैं ऐसा नहीं कि कोई नहीं चाहता, लेकिन होता क्या, उस मार्ग का चयन करने में ही भूल हो जाती है। अंतर इतना, सब चाहते हैं, सब सुख को की तरफ ही दौड़ रहे, लेकिन जो है जब सुख के लिए जा रहे हैं तो सुख का जो साधन समझ रहे हैं, अमरता का जो साधन समझ रहे हैं, उसका चयन करने में ही भूल हो रही। उस भूल की निवृत्ति यदि हो जाए, और वो निवृत्ति करने वाला कौन है, तो संकेत कर दिया, ज्ञानम है स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम, वही करने वाला। इसलिए उसके प्रसाद की जरूरत, लेकिन इतना होना है, रुचि तुम्हारी होनी है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन ने क्या किया, प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर, आनुमानिक प्रमाण के बल पर, और भगवान के सामने सारे तर्कें प्रस्तुत कर दी, और तब निर्णय लेकर के कहा नयोतिष्याम, ये कहा ना, तो उसने प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर, उसकी तर्कें प्रत्यक्ष प्रमाण से मने पुष्ट हैं, प्रामाणिक हैं, और जो है आनुमानिक प्रमाण से भी प्रमाणित हैं, लेकिन अनुमान की गति है कहां तक, प्रत्यक्ष की गति है कहां तक। भगवान जिसकी संकेत जिसका कर रहे हैं वो अनुमान का विषय नहीं है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि का विषय नहीं, और वहां कोई तर्क भी काम नहीं आती, नहीं को तर्को प्रतिष्ठा, वहां तर्क की प्रतिष्ठा है ही नहीं, ऐसा अवतार है। राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनो सैनी, तुलसी रामायण में भी जो है भगवान शंकर ने यही तो उपदेश पार्वती को दिया, वो तर्क का विषय नहीं, तो ऐसे अब उसको हम चाहते तो हैं, लेकिन वो तर्क के आधार पर नहीं मिलेगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण कहां काम आने वाला नहीं, और जहां ये काम आने वाला, हमारी गति तो यहीं तक है, आगे हमारी गति है नहीं, तब जहां गति नहीं है तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। अब जब सहारा लेना है तो सहारा कैसे लिया जाए, तो भगवान ने इसका उपाय बतलाया, और सर्वी शास्त्रों में जो भी कहा, मई एव मन आदत्स्व मई बुद्धिम निवेशय, और तप आदि की बात कही है ना, जो भी कहो है तो माम कथयंतश्च रमंतश्च इत्यादि करके जो कहा, मेरा ही परस्पर कथन करो, अर्थात इंद्रियों का भी प्रयोग मेरे में करो और मन का भी प्रयोग मेरे में करो, और ये करने लगे तो क्या हुआ, इंद्रिय और मन का झुकाव उधर हुआ, ये रुचि हो गई, और जब रुचि हो जाएगी तो भगवान आगे क्या कहते, कहा आगे का कार्य तो मैं संभालूंगा, है ददामि बुद्धि योगम ते, तो हम तेरे को बुद्धि योग दे दूंगा, और उस बुद्धि योग से क्या होगा, फिर तू मेरे को प्राप्त, तुझे अमरता की प्राप्ति हो जाएगी। एक मोटे रूप में सुना, एक बार अवंतिका का राजा मेघपाट के आसपास घना जंगल था, उसमें पहले जंतु बहुत थे, तो शिकार करने के लिए उसमें गया, और जब शिकार करने के लिए गया तो उसका प्रोग्राम एक महीने का था, एक महीने शिकार करनी, तो अब जब वहां रहेगा तो कैसे रहेगा, तो या तो टेंट लगाए माने पटकुटी बनाए या पर्णकुटी बनाए, राजा ने भी वहां पर जो है टेंट आदि लगाया। अब जो है शिकार करने के लिए वहां के लोगों का सहयोग चाहिए, तो भील एक था, उस भील को उन्होंने चयन किया, उससे कहा तुम मेरा सहयोग करो, उस भील ने जो है तीर आदि लेकर के अपने जो वाद्य होते थे उनको लेकर के और राजा का जो है सहयोग करने लगा, वो वाद्यों को बजाता था और वाद्यों के शोर को सुनकर के वो जानवर जो है निकल के बाहर आते थे, और आते थे तो राजा उनकी शिकार करता था। इस प्रकार से उस भील ने उस राजा का सहयोग किया। अब एक महीने तक उसे रहना था, एक महीने तक वो राजा रहा, शिकार करता रहा। उस भील ने बड़े ही संलग्नता के साथ में, बड़ी तल्लीनता के साथ में, रुचिपूर्वक उस राजा का सहयोग किया। अब राजा धार्मिक था, पहले राजा ऐसे नहीं होते थे, कैसे होते थे, धार्मिक, और धार्मिक था तो राजा का नियम था प्रातः काल उठ करके और भगवान शिव की आराधना करता था। तो राजा जो है उसके पास भगवान का विग्रह था, तो उस विग्रह का जो है अर्चन आदि करना, उसका अभिषेक आदि करना ये कार्यकर्ता था। अब जो है वो अपने उस टेंट में बंद करके ये काम करता था और वो बाहर बैठता था। एक दिन उसके अंदर जिज्ञासा हुई कि राजा सुबह सुबह बैठ करके बंद होकर के इसमें क्या करता। इसलिए उसने टेंट में से थोड़ी सीमेंट हटाई और देखने लगा और देखा तो उसने देखा कि ये जो है पूजा और अभिषेक करते हुए देखा। अब ये कोई जरूरी नहीं, जब परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है तो किसके हृदय में कब क्या प्रकाश कर दे ये कोई नियम नहीं। भले ही हम कह दें ये बैकवर्ड है, ये आदिम जाति का है, ये भील है, ये सब वहां परमात्मा के यहां भेद, क्योंकि सारे अंतःकरण में और कब प्रकाश कर देता, कब किसकी क्या स्थिति कर दे ये कुछ कहना, लेकिन रुचि की बात है, श्रद्धा की बात। अब उसके अंदर रुचि पैदा हो गई, ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। और जैसे ही रुचि उसकी हुई, उसके बाद राजा का एक महीने का कार्य पूरा हुआ। राजा वहां से चलने लगा। उसने कहा कि भाई तूने मेरी बड़ी सेवा की है, तू मेरे से कुछ मांग ले। उसने कहा कि मैं मांग लूं आप दे दोगे? उसने कहा हां दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो आप प्रातःकाल जिस विग्रह की पूजा करते वो मुझे दे दो। राजा ने सोचा ये भील है क्या करे, कहा कि तू कुछ और मांग ले, इसका तू क्या करेगा। एक दो बार राजा ने कहा, लेकिन उसने कहा नहीं, कहा उसने कि तुम्हें देना है तो ये दे दो, नहीं देना तो कोई बात। राजा ने सोचा चलो इसने सेवा की, राजा ने उसे दे दिया। फिर उसने नियम पूछा कि इसकी अर्चना कैसे करेंगे, इसकी विधि बतलाओ। राजा ने कहा भील जात की क्या पवित्रता रख पाएगा। तो राजा ने एक सामान्य नियम बता दिया, कहा तू जंगल में रहता है, धारा प्रिय सेवा, जल चढ़ा देना, पत्र पुष्प चढ़ा देना, और जो है नैवेद्य आदि तेरे पास जो हो वो चढ़ा देना, और फल फूल चढ़ा देना, ये सब कह करके। लेकिन एक नियम रखना। क्या? कहा भस्म जरूर चढ़ाना, चिता भस्म जरूर चढ़ाना। कहा इसमें पवित्रता पवित्रता की कोई बात नहीं, ऐसा राजा ने सोच के बता दिया, और किसी में त्रुटि हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भस्म का नियम रखना, भस्म रोज चढ़ाना। उसने कहा ठीक। वो चला गया राजा, वो जो है वहां पर उसको लेकर के, और उसने अपनी अर्चना प्रारंभ कर दी अपनी झोपड़ी, और नियम से वो करता रहा। बारह वर्ष बीत गए। बारह वर्ष के बाद ऐसी वर्षा हुई कि चारों तरफ जल ही जल हो गए। अब उसे उस दिन चिता भस्म कहीं मिली नहीं, तो बड़ा ही दुखी मन बैठा हुआ। साथ में उसकी पत्नी भी सहयोग करती थी। पत्नी ने कहा कि क्या बात है? उसने कहा आज तो मैं शरीर को छोड़ दूंगा। कहा क्यों? कहा एक नियम केवल मेरे लिए बतलाया थे बड़े राजा ने, और अपना जो है प्रिय जो है मैंने इष्ट हमको दे दिया, और इसकी पूजा मैं कर रहा हूं, आज मैं इसको पूरा नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मेरे लिए धिक्कार है, मैं तो इस शरीर का ही त्याग कर दूं। उसने कहा इसमें चिंता करने की बात क्या? कहा क्या मतलब? कहा ये झोपड़ी है ना। कहा क्या मतलब? कहा ये अंदर से सूखी है, इसमें मैं बैठ जाऊंगी, आग लगा दूंगी और मैं जल जाऊंगी, चिता भस्म तैयार हो जाए। कहा तू? कहा हां। इसमें सोचने की बात क्या? ये शरीर तो जब नाशवान है और शरीर को नष्ट होना ही है, और यदि ये परमात्मा के काम आ जाए, उसके लिए अर्पित हो जाए, तो इससे बढ़कर के और हमारे लिए क्या? जब वो स्वयं मांग रहा है कि मन मेरे को दे दो, बुद्धि मेरे को दे दो, इंद्रिय मेरे को दे दो, सारे शास्त्र भी यही बात कहते हैं, जहां यज्ञ की बात है वहां भी यही चर्चा आई, तो इसको करने में क्या? उसने कहा तो ठीक कहती, और हुआ भी वही। अब समय हो गया, चर्चा इसकी पूरी नहीं हो पाई, कल कर दें।
4: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

नजः होताध्वर्युरावाय अग्निमिन्धोग्रावग्राभ उतशग्स्तासु विप्रः तेनायज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आप्रोनध्वम् यूपव्रस्का उतये यूपवाहाश्च शालय्ये अश्वयूप

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

भगवत्पादाचार्य शंकर अपना मनीषा यानी निश्चय प्रार्थना के रूप में भगवान श्याम सदाशिव के सामने

अवचेतन मन में उस संस्कार जो है प्रबल होता है, अधिकतर समय उस संस्कार को हम ध्यान भी नहीं देते हैं, परंतु परिस्थिति परिवेश उपस्थित होने पर अचेतन भाव से ही वो संस्कार जो है प्रबल हो उठता है और अपना जो अस्तित्व है उसको प्रकट कर देते हैं। इसलिए भगवत भक्त जन जीवन में न जाने कितने बार इस संसार में आना पड़ा, केवल मनुष्य रूप से ही नहीं, क्या क्या जन्म लेना पड़ा, सब संस्कार इसमें है। इस संस्कारों को परिशोधन करना, संप्रोक्षण करना, संशोधन करना, यही है साधना। उस संस्कार को क्या है संस्कार वो पता नहीं है हम सबको, परंतु कहीं ना कहीं मन में उस संस्कार को अगर शोधन शुद्धि करने की इच्छा है तो जीवन भर सत्कर्म, सद आचरण, सद विचार, सद भाव, इस सब में अगर जीवन को बिताते हैं, लगाते हैं, तो जितने भी संस्कार है चाहे वो अशुभ क्यों ना हो, वो अशुभ संस्कार शुभ वासना, शुभ कर्म, शुभ भाव से दब जाता है, परिशोधन कर सकते हैं। इसीलिए भाष्यकार, ग्रंथकार, आचार्यों ने बारंबार सत्कर्म सद्भाव में रहना, सद विचारों को दिल में बैठाना, ऐसा जीवन में कोई भी आचरण नहीं होना चाहिए कि वो अशुभ संस्कार और दृढ़ होता जाए। इसीलिए प्रत्येक आचरण में, प्रत्येक चिंतन में, प्रत्येक भाव को आप देखें और सजग होकर के कि मन में न जाने कितने प्रकार के भाव है, उसमें अशुभ और शुभ दोनों हो सकता है, परंतु अशुभ को मिटाने के लिए शुभ वासना, शुभ कर्म, शुभ संस्कार, शुभ प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए तो ऋषि कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, वो ऋषि की प्रार्थना है। जैसा लगता है वैदिक काल में वो प्रार्थना वो किए, तो इस वर्तमान युग में हमारे लिए क्या करना चाहिए। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। कई बार हम चीज देखते हैं, हमें लगता है कि इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, संस्कार नहीं, इसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ सकता है। नारायण, यह मन, यह अंतकरण ऐसा एक तत्व है, आप चाहे न चाहे अनवरत वो जो है प्रत्येक छवि को, प्रत्येक चित्र को, प्रत्येक विषय को, जो ही आपके कांटेक्ट में आता है वो जो है स्नैप ले लेते हैं। आपको पता तक नहीं लगेगा कि कब वो क्लिक हो गया, और परिस्थिति आने पर जब आप एकांत होना चाहते हैं, मन को वश में करना चाहते हैं, मन को प्रभु चरणों में अर्पण करना चाहते हैं, मन के शुभ भावों को आप देखना चाहते हैं, तब वो अशुभ भाव, अशुभ दर्शन, अशुभ विचार, अशुभ जितने भी आपने संग्रह किया वो सब प्रबल होकर के आपके शुभ भाव को मिटाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं।

0: इसलिए जब भी मन में आए कि अमुक कर्म करूं अगर वो सत है तो तुरंत उस पर उसको कर लेना चाहिए। सत कर्म में सद्भाव में पोस्टपोन की थ्योरी ठीक नहीं है। हम लोगों की चित्त की एक धारा है जो शुभ है उसको हम ढकेलते रहते हैं, बाद में करूंगा। जो काम्य है, कामना प्रयुक्त है, जिसमें सामान्य सुख निहित है, श्रेय नहीं है, प्रेय है, उसके लिए हम अधिक प्रयत्न करते हैं और उसको कर लेते हैं। भगवत भक्तजन जो संस्कार शुभ चित्त को परिशोधन करने में सक्षम है उसको अधिक से अधिक आचरण करना चाहिए। और यही आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी अपने जो गौड़ ब्राह्मणत्व का जो अभिमान है, चूंकि इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष है, सर्वशास्त्रविद है, फिर भी उनके जीवन में एक संस्कार, टीकाकार लिखते सैव संस्कार प्रबल तरह, जीवन भर गुरु सन्निधि में रह करके विद्या अभ्यास करते हुए साधना के द्वारा एक स्थिति में पहुंचे हैं, फिर भी वो जो संस्कार वो अभी भी पीछा। तो ऐसा साधक, ऐसा मनोवृत्ति, मन की दशा तो अपनी नहीं है नारायण। तो जब हम कुछ कर्म करना चाहते, शुभ विचारों को लाना चाहते, तो वही अशुभ संस्कार जो है हमें भी बाधक के रूप में, प्रतिबंधक के रूप में उपस्थित हो जाता है। और उस संस्कार के परवश होकर के आचार्य अपना जो है रिएक्ट भी करते हैं। इसलिए मैं पहले दिन ही बताया कि आचार्य को एक सामान्य मनुष्य, मानव, किस प्रकार वो अति मानव देव भूमि तक पहुंच सकते हैं। मैनेज रैशनल एनिमल, रैशनलिटी एनिमिलिटी दोनों है नारायण। आप मनुष्यत्व तब अर्जन कर सकते हैं जब आप अपने विचारों को, भावों को संशोधन के द्वारा एक दिव्य सत्ता की ओर जा सकते हैं, तब आप मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एनिमिलिटी को पूर्ण रूप से दूर करना कठिन है, असंभव सा है, दीर्घ प्रयत्न और वो विचार रैशनल, ये विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा संस्कार को थोड़ा सा शोधन करना है और तब जाकर के आपके अध्यात्म जीवन की शुरुआत हो सकती है। नहीं तो माला लेकर के बैठ सकते हैं, प्रभु के पास पहुंच भी सकते हैं, परंतु वो संस्कार अगर प्रबल है तो हम प्रभु के पास फिजिकली शरीर से तो उपस्थित हो सकते हैं, परंतु मेंटली उतना ही दूरी में मौजूद होते हैं। प्रभु के साथ नैकट्य मानसिक स्तर पर होना चाहिए, फिजिकल स्तर पर होकर के कुछ मिला नहीं, कुछ पाया नहीं, कुछ अनुभव नहीं हुआ, और वो अगर हम मेंटली मानसिक स्तर पर उनके निकट पहुंचते हैं तो हमारे जीवन को एक प्रकाश, एक तृप्ति, एक शांति दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विचारों को, भावों को जब हम करते हैं, वो विचार करने से नहीं, वो विचार में अमल होना है, उतरना है, लाना है प्रयोग में, तब जाकर वो विचार आपके जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। और आज जगतगुरु शंकराचार्य जी के जीवन में वो हम देखते हैं कि संस्कार के परवश होकर के एक ज्ञानी महापुरुष, चाहे अगर प्रत्यक्ष न भी माने, परोक्ष रूप से वो ज्ञान को प्राप्त किए और वो संस्कार को, ये जो वासना है, अशुभ संस्कार है, उसको दूर करने के लिए आदिदेव महादेव उपस्थित हुए हैं। भगवत भक्तजन साधक के जीवन में ये बहुत ही एक अनोखा उपलब्धि है। जब वो साधना में तत्पर हो जाते हैं, उनके जीवन में अगर ऐसा कोई भी त्रुटि हो, आपके समर्पण, आपके आचरण, आपके डेडिकेशन के ऊपर निश्चय है कि प्रभु का आगमन, और वही आचार्य के जीवन में हम देखते हैं। भगवान विश्वनाथ ने विचार किया, सोचा कि ये संस्कार इनको बहुत दूर ले जा सकता है, इसीलिए वो स्वयं अंत्य वेश धारण करके चांडाल रूप से उपस्थित हो करके उनके जो संस्कार है उसको दूर करने का प्रयत्न किया। तो क्या ये हमारे जीवन में नहीं संभव है, हो नहीं सकता है? बिल्कुल हो सकते नारायण, और वही संभव है जब आपके जीवन में इस प्रकार के समर्पण, इस प्रकार के सद आचरण, सद विचार आप कर सकते हैं। आचार्य ने अपने उस संस्कार के परवश उस चांडाल को हट जाओ करके भगाया, परंतु जब वो देखा कि ये चांडाल हटना तो दूर और जो है निकट आने लगा, तब वो घबराया और सामने एकदम निकट आकर के सामने आकर के खड़े हो गए। मदमस्त घोर अघोर एक रूप है बाबा विश्वनाथ के, और उस रूप को आचार्य पहचान नहीं पाए। इसलिए भगवत भक्तजन ध्यान के द्वारा उन्होंने उस स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को पहचाना। जब हम आचार्य की जीवनी को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, लगता है कि जीवन में ध्यान है, साधना है, सत्कर्म है, सद्भाव है, सद्विचार है, तब जाकर कि उन्होंने ध्यान में पारंगत होकर के उस दिव्य स्वरूप का अनुभव किया। परंतु जब इधर देखते हैं अपने पास, तो वो योग्यता भी नहीं लगता है कि हम कोई अगर आवृत्त सत्ता आवरण लेकर के प्रभु भी हमारे पास आ जाए। क्या पता आपके जीवन में, हमारे जीवन में ईश्वर आया नहीं हो, ऐसा है क्या? नहीं आया है क्या? पता आया हो, आप पहचान नहीं पाए। उस योग्यता को विकास करने के लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न, भगवत भक्तजन भावों को शोधन, संशोधन की जरूरत है। हमेशा नेगेटिव विचारों में नहीं रहना है, किसी के बारे में किसी कोई भी थॉट्स को हमें बिल्कुल नेगेटिव नहीं, पहले हम पॉजिटिव देखें, और हो सके तो जितना हो सके हम सकारात्मक भावों को ही मन में प्रतिष्ठित करें। नकारात्मक तो स्वतः संभव है, आ जाता है, परंतु उसको हटाना है, साधना है। नहीं तो देखिए, आप पार्क में बैठे हैं, अचानक आपके पास कोई आकर के बैठा और आपके तरफ दो तीन बार देखा, आपके हाथ में पॉट्स है, हाथ में मोबाइल है, दो तीन बार देखा, आपके मन में कौन सा विचार आया होगा? बहुत सहज है, स्वाभाविक है कि क्या पता कोई नहीं है, 7:30 बज रहा है, ये कहीं मोबाइल लेके तो नहीं भागे, कहीं चोर तो नहीं है। आपके पास में जो बैठे थे, आपके मन में जैसा ही विचार आया, वो आप उनसे शेयर की कि देखो कैसे देख रहे हैं, हमको तो ठीक नहीं लग रहा है, चलो चलो यहां से चलते। वो व्यक्ति कह, अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो, वो तो अन्य भी हो सकता है, वो कुछ तुमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। दोनों भावों को देखिए। एक संत जी भिक्षा करने गए और उस घर की बेटी जो है भिक्षा देने पहुंचे और वो युवा संत जो है उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से देखने लगे, तो उस लड़की ने क्या सोचा है? अंदर जा करके अपने भाई को, पिता को कहा कि देखो कैसा देखने, इसका दृष्टि जो है बड़ा खराब लगा मुझे। भाई जो है गरम होकर के आए, अपमान किया और पिताजी जो है धक्का देकर के निकाल दिया। संत तो निकल गए और वो ज्यों ही वो निकल गया, कुछ समय पश्चात उस घर में एक अघटन, पिताजी जो है बीमार हो गए। बहुत कोशिश किया परंतु उस अस्वस्थता से स्वस्थ नहीं हो पाए। किसी ने बोला कि कुछ किया तो नहीं, तो उस लड़की के दिमाग में आया कि अरे कल जो है हमने ऐसा किया, अगर शायद उनकी दृष्टि ऐसा नहीं था, मैं कुछ ज्यादा ही बता दिया था। उनके मन में आया और वो भाई को भेजते हैं कि जाओ जाओ। और वो संत जी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान से केवल प्रार्थना ही कर रहे थे कि मेरी दृष्टि में ऐसा कोई भाव नहीं है। जब वो लड़का को देखा तो संत के मन में आया कि क्यों ये फिर आया है, और उनके उस भाव को पूर्व घटना जो है मन में आया और वो संत के आंखों से आंसू आने लगे। तो वो बालक वो पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो आप हमें क्षमा कीजिए, मेरे पिताजी की ये अवस्था है, आप आशीर्वाद दीजिए, आप चलिए। संत जी कहने लगे कि देखो मैंने तो देखा केवल कि मैं कब घर छोड़ा, और घर छोड़ते समय आज तुम्हारे बहन को देख करके मुझे मेरी माँ की याद आई, और मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा कि मेरी माँ भी ऐसी थी, लेकिन तुम लोगों ने अलग अर्थ, गलत अर्थ निकाला, और यही मैं पश्चाताप में भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर मेरी दृष्टि शुद्ध है तो ये शुद्ध दृष्टि उनको क्यों नहीं इफेक्ट किया। मेरे मन में तो ऐसा कोई भी भाव नहीं है। इसलिए भगवत भक्तजन, आप किस भाव को रखते हैं वो बहुत मायना करते, जीवन को बहुत अर्थ रखते हैं। और वो शंकराचार्य जी जो है दूर हट जाओ किया और आचार्य के पास आकर के विश्वनाथ खड़े हो गए, और फिर विश्वनाथ उनसे दो प्रश्न पूछते हैं।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kunguliya Kalaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapur Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम सुनेंगे और एक नायनमार या संत की कहानी जिनका नाम था कुंगलिय कलयनार। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध स्थल तिरुकड़वूर है। यह मयिलाडुतुरई नामक शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल में इस स्थल पर मार्कंडेय ऋषि की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव ने यमराज को लात मारी थी। इसी तिरुकड़वूर में एक संपन्न ब्राह्मण कुल में कलयनार नामक शिव भक्त का जन्म हुआ। वे सदा ईश्वर के सन्निधि में अगरू या धूप जलाकर पूरे मंदिर में सुगंधित धुआं फैलाने में आनंद का अनुभव करते थे। कलयनार के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह धूपदान सेवा ही था। समय बीतता गया, धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति संकट से घिर गई और वे बहुत गरीब हो गए। गरीबी के कारण घर में अन्न का अभाव हो गया, यहाँ तक कि कई दिन तक परिवार में सबको भूखा सोना पड़ता था। एक दिन उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी ने अपना मंगलसूत्र देखकर उन्हें भोजन सामग्री लाने के लिए कहा। पतिव्रता स्त्री मंगलसूत्र की रक्षा को सर्वोच्च मानती हैं, लेकिन बच्चों की भूख की व्याकुल स्थिति देखकर उनसे रही नहीं गई और उन्होंने अपने पति कलयनार से कहा कि जाओ इसे बेचकर कुछ धान्य सब्जियां लेकर आओ। चावल खरीदने के लिए कलयनार बाजार की ओर चल रही है। भगवान शिव ने इसी वक्त अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए अवसर चुना। एक व्यापारी अगरू या धूप बेचता हुआ कलयनार के सामने आ गया। बस फिर क्या था, वे चावल, भूख से भिड़कते बच्चे और पत्नी को भूलकर मंगलसूत्र के बदले धूप लेकर सीधे मंदिर आ पहुंचे। सब और धूप की धुआं फैलाकर आनंदातिरेक का अनुभव करने लगे, परंतु कुछ देर पश्चात भूख और थकान के कारण कलयनार चक्कर खाकर गिर पड़े। तभी भगवान शिव ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और उनसे कहा, जाओ घर से खीर लेकर आओ। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस उनमें नहीं था और वे भगवान से इतना प्रेम करते थे, उन्होंने बिना सोचे समझे अपने घर की ओर चल पड़े। जाते ही उन्होंने क्या देखा, यह देखा कि उनके घर के स्थान पर एक बहुत बड़ा घर है। उनकी छोटी कुटिया के सामने एक बहुत बड़ा घर है। वे आश्चर्यचकित हो गए। इसका कारण कुछ इस प्रकार था। इधर कलयनार जब मंदिर में धूप जला रहे थे, उनकी धर्मपत्नी बच्चों की बिलखते हुए रोदन को बंद कराकर उनसे प्रभु के गीत गाकर उन्हें सुलाने में लीन थी। वह शिव भक्ति में लीन थी। शिव इस दंपति के स्नेहभाव से प्रसन्न हुए। पत्नी को स्वप्न दर्शन देकर शिव प्रभु ने उसे अपार धन धान्य का आशीर्वाद दिया। नींद खुलने पर उसे सर्वत्र धन ऐश्वर्य और भारी मात्रा में भोजन पदार्थ देखकर वह विश्व विमूढ़ हो गई। तुरंत भोजन बनाकर वह पति की प्रतीक्षा करने लगी। कुंगलिय नायनार जब घर पहुंचे तो उन्होंने शिव की कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उन्होंने खुद खीर बनाकर भगवान के यहाँ पर भोग लगा दिया। एक दिन कलयनार तिरुपनंताल में ताटकेश्वर शिव के दर्शन के लिए गए। वहां का शिवलिंग तिरछा हो गया था। स्थानीय राजा और उनकी सेना ने अनेक शक्तिशाली वीर शरीर को रस्सी से बांधकर उस शिवलिंग को सीधा करने के प्रयास में असफल हो चुके थे। तभी कुंगलिय कलयनार के मन में आया, क्यों ना वे भी उनकी भांति प्रयत्न करके असफल हों। भगवान के लिंग शरीर से बंधी हुई रस्सी को अपने शरीर के साथ बांधकर उन्होंने खींचना प्रारंभ किया। तभी चमत्कार हो गया। कुंगलिय कलयनार के प्रेम रूपी पाश में बंधे शिव तुरंत ही सीधे हो गए। सर्वत्र जय जयकार की घोषणा हो गई। कुंगलिय कलयनार तिरुकड़वूर लौटे। कालांतर में उन्हें अपने यहाँ महान भक्त திருநாவுக்கு அரசர் और திரு ஞான சம்பந்தர் ஆதி के स्वागत सत्कार का सौभाग्य मिला। திருப்பனந்தாள் की अद्भुत घटना पर गहन चिंता अपेक्षित है। एक राजा और उनकी सेना और उनकी सारी हाथी घोड़े सब जिस शिवलिंग को सीधा करने में असमर्थ रहे, वहीं पर कुंगली कलयनार की प्रेम रूपी पाश में पड़कर भगवान शिवलिंग सीधे हो गए। इसी घटना के चलते महान संत चेक्किलियर कवि ने कहा है, हाथियों सहित संपूर्ण सेना जिस प्रयास में असफल होकर थक गई, उसी थकान और पीड़ा को मैं स्वीकार करूंगा अगर मुझे कुंगलिय कलयनार जैसी भक्ति और प्रेम भावना प्राप्त हो। तमिल में तिरुवल्लुवर ने कहा है, यदि परपीड़ा को स्वपीड़ा मानने का भाव न हो तो मानव का समस्त बुद्धि वैभव निरर्थक है। यही कुंगलिय कलयनार का आदर्श था। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi. Presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahai ओम शांति शांति शांति। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्रमथा शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथा पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंतूटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम।
6: आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर सायंकालिक विशेष प्रवचन माला चल रही है। विचार के लिए 11वां श्लोक। बटुर्वा गेहि वा

0: महसि भटुर्वागेहि वा। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति बच्चों को नहीं करनी चाहिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि वेदांत श्रवण बूढ़े होने पर ही करनी चाहिए, बहुत लोग कहते हैं कि वेदांत तो सन्यासियों का विषय है, उनको जिम्मा लगा दो, किसी को कहो कि वेदांत श्रवण किया करो तो बोले महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हमारे तो बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बहुत से जिम्मेवारियां हैं, आप लोग जैसे सन्यासी तो है ही नहीं भाई, हमसे कहते हैं लोग। तो यहां शंकराचार्य जी कल के श्लोक में ये बताया था भगवान की भक्ति करने के लिए देह अर्थात अन्नमय शरीर स्थूल शरीर ये महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं कि शिव की पूजा शिव की भक्ति शिव की अर्चना केवल ब्राह्मण ही करे, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि शिव भक्ति शरीर से नहीं हृदय से होनी है। देवता लोग ही भगवान शिव की आराधना करते थे ऐसी बात नहीं है, उसके लिए देवता बनने की जरूरत नहीं है, राक्षस होकर भी भगवान शिव की भक्ति की जा सकती है, बशर्ते शरीर भले ही राक्षस का हो हृदय राक्षस का न हो। क्या समझे? कई बार शरीर मनुष्य का होता है और हृदय राक्षस का होता है कि नहीं, उल्टा हो जाता है संसार में ऐसे बहुत, आजकल तो मुझे लगता है सारे राक्षस मर के अभी मनुष्य होकर पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हृदय उनका राक्षस का है, दिखता है सही है, होना चाहिए था शरीर राक्षस का भले ही हो, हृदय विशुद्ध शिव भक्ति से भरा हुआ होनी चाहिए था। तो कल के श्लोक में बड़ा जोर लगाया गया, पशु हो जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पशुओं द्वारा शिव भक्ति किए हुए भगवत भक्ति भगवान की भक्ति किए हुए हजारों उदाहरण हैं, पक्षी होकर भी भगवान की भक्ति किए हुए हजारों उदाहरण हमने दे दिया है, कीट पतंग होकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हो, शरीर महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हमने कल संकेत कर दिया था, कोई कहते हैं महाराज महिलाएं स्त्री शिवलिंग का स्पर्श न करें, है? अब यह सर्वथा मूर्खता की बात है, पृथ्वी शिवलिंग है तो आप क्या करोगे, स्पर्श नहीं करोगे तो कहां जाओगे, पृथ्वी पूरी पृथ्वी शिवलिंग है, क्या करोगे बोलो, तो स्पर्श न करें स्त्री तो कहां खड़े हो जाएं, कहां खड़े हो, आकाश स्वयं शिवलिंग है, क्या कर लोगे बोलो, क्या शिव स्पर्श नहीं होगा, तुमर कस्तुम सोमा तुमसी पवनस्तुम उतवह, लियो जी ये हवा है पवन है वो पूरा शिवलिंग है। आप लोग तिरुपति बालाजी तो बहुत गए होंगे लेकिन श्रीकाल हस्तीश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया होगा, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि तिरुपति बालाजी वह आजकल के हिसाब से वो सभी को पैसा बांटने वाले देवता हैं, खो धान संपत्ति देने वाले देवता हैं। अब श्रीकाल हस्तेश्वर महादेव तो बेचारे फक्कड़ हैं, हैं? इसलिए आप लोग नहीं जाते हो। तिरुपति बालाजी से 40 किलोमीटर चेन्नई की तरफ, मद्रास की सिटी, राजधानी की तरफ 40 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है श्रीकालहस्तीश्वर महादेव। वहां श्रीकालहस्तीश्वर महादेव की जो मंदिर है वहां कोई शिवलिंग नहीं है, वो मंदिर वायुलिंग है, वायुलिंग है। मंदिर भव्य है, बहुत विशाल मंदिर है। साउथ के मंदिर तो आप लोग जानते ही हो, देखा ही है, हर मंदिर बड़े बड़े विशाल होते हैं और मंदिर से भी गोपुर और भयंकर होते हैं। लेकिन वो विशाल मंदिर के अंदर जो गर्भगृह जहां शिव विग्रह रखा जाता है वहां कोई शिवलिंग नहीं, वहां हवा ही वहां शिवलिंग है, उसको वायुलिंग कहते हैं। अंदर एक बत्ती ज्योत जला रखी है, वो ज्योत हवा से जो हिलती है ना, वही हिलना, बत्ती का हिलना ही हवा है, वहां वायु है, हमेशा जलती रहती है, तो वायुलिंग के रूप में। तो पुराण में बताया, शिव महिमनि स्तोत्र में बताया, तुम पवन असि, ये हवा ही शिव है। तब महिला शिवलिंग स्पर्श न करे, तब ये वायुलिंग का स्पर्श किए बिना कैसे बचोगे तुम लोग, बोलो है? अब आकाश लिंग है, अब आकाश का स्पर्श किए बिना तुम्हारा अस्तित्व कहां रहेगा? देखो, शरीर से स्पर्श हो न हो ये बात महत्व की चीज नहीं है, तुम्हारे भावना से स्पर्श है कि नहीं। कीटत्व का उदाहरण आया श्रीकालहस्तीश्वर के, मुझे ख्याल आ गया, वहां उसके इतिहास है। एक मकड़ी, मकड़ी होता है ना, जाला बनाकर रहता है, गुजराती में क्या करोड़ियों बोलते हैं, करोड़पति हो कि करोड़ियों पता नहीं, क्योंकि करोड़पति के भवन में भी रहता है ना वो, अरबियों कह दिया तो भी चलेगा क्योंकि अरबपति के यहां भी रहता है वो। तो उसके इतिहास है, कहते हैं एक मकड़ी भगवान शिव को दिन में, कहते पहले मंदिर नहीं था, कहते जंगल था, तो दिन के समय में वो मकड़ी सुबह सुबह आए और पूरा ऊपर शिवलिंग के ऊपर जाला बनावे। तो किसी ने पूछा कि क्या करता है, बोले भगवान दिन भर धूप में पड़े रहते हैं, कोई छतरी लगाने वाला नहीं आता है, हमको 2 मिनट 10 मिनट धूप में खड़े होना पड़ता है तो कितना कष्ट होता है बेचारे, उनको कोई छतरी नहीं, कोई छाया नहीं, इसलिए भगवान को छाया बनाने के लिए छतरी लगा रहा हूं। इसलिए उसका नाम श्रीकालहस्ती। एक हाथी फिर नदी में जाता था, सूंड में पानी भर के लाता था और भगवान शिव को चढ़ाता था, फिर वह सूंड से जैसे पानी चढ़ाए तो वह बेचारा मकड़ी का बनाया हुआ छतरी सब टूटे, फिर मकड़ी दोबारे छतरी बनाने लग जाए। भक्ति करने के लिए शरीर मनुष्य का चाहिए ये मतलब नहीं है, मकड़ी के शरीर में भी उसका जो हृदय है वो तो वही है। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूं, हृदय के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में हमेशा ये कह रहा हूं, तो तुम लोग सत्संगियों को भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि पुनर्जन्म हुआ तो केवल स्थूल शरीर ही बदलता है, सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं। समझे कि नहीं? मान लो यहां जो शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे दूसरे जन्म में कौन से योनि की प्राप्ति होगी, ये वो महत्व की चीज नहीं है। कुछ भी हो जाए, लेकिन हृदय भगवान की भक्ति में चरण में लगा रहे, क्योंकि अभी हम मनुष्य हैं तो इस समय हमारा हृदय है, हमारे पास हृदय है। मान लो कि किसी काम, किसी कर्म और अविद्या, अविद्या काम कर्म पुनर्जन्म का हेतु है, वेदांत बार बार यही कह रहा है। अविद्या माने स्वरूप का अज्ञान, काम माने वासना, जन्म जन्मांतर की वासनाएं, कर्म माने शुभाशुभ कर्म, ये तीन के आधार में पुनर्जन्म होता ही रहता है, होता ही रहता है। और जब तक ये तीन वस्तुओं का बाद नहीं होगा, नाश नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा, तब तक पुनर्जन्म नहीं रुकता, तब तक पुनर्जन्म नहीं रुकेगा। तब मान लो कि अभी हम मनुष्य हैं, मनुष्य के योनि में रहते हुए हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, किसी कर्म वासना के चलते दूसरे जन्म में हमको मकोड़े का जन्म लेना पड़ेगा, तो सूक्ष्म शरीर वही होगा जो अभी है, यही होगा, सूक्ष्म शरीर बदलेगा नहीं है? और संस्कार भी यही होंगे जो इस शरीर में, इस समय सूक्ष्म शरीर में हैं। तो भगवान इतने ही कहते हैं कि वो अभी जिस तरह की आपके चरण कमल में मेरी भक्ति है, ये भक्ति किसी भी शरीर में मैं जाऊं, ये भक्ति यथावत बनी रहे, ऐसा नहीं कि जन्मांतर में वो विस्मृत हो जाए, वो बाधित हो जाए है? तो ये देह के प्रति महत्व न देते हुए हृदय के प्रति महत्व देकर ये श्लोक में शंकराचार्य जी ने ये कहा कि मुझे पुनर्जन्म से भी मुझे कोई दुख नहीं है। पुनर्जन्म होता है, हो जाओ, और पुनर्जन्म भी मनुष्य के प्रति राग भी नहीं है, पशु पक्षियों के से द्वेष भी नहीं है, शरीर जिस किसी का भी मिले, आपसे इतनी प्रार्थना है कि ये हृदय सतत आपके चरण की भक्ति करता रहे। अब यहां बोल रहे हैं वेद का पूरा आधार ही वर्णाश्रम है, और आज उस वर्णाश्रम को तोड़ दिया गया, क्योंकि वैदिक सिद्धांत ही आज सभी ने तोड़ दिया। किसी को हाँ, सब लोग कहते हैं तुम किस धर्म को मानते हो, किस शास्त्र को मानते हो, तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ क्या है, सब कहते हैं कि हम वेद को मानते हैं, है? सब कहते हैं हम वैदिक सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन वेद को मानते हैं, वेद का कहा कोई नहीं करता है, वेद को मान रहे हैं, वेद का कहा कोई नहीं मानता। वो ठीक इसी तरह कोई बच्चा बाप को मानता है, बाप का कहा नहीं मानता। कोई बच्चा मां को मानता है, मेरी मां है, मानता है, तू मानता है ये तेरी मां है, बोले हां मेरी मां है, मानता हूं, जानता भी है, बोले हां मेरी मां है, मैं जानता हूं। क्या मां का कहा मानता है? वो तो जरूरी नहीं है महाराज, मां को मानना जरूरी है, बाप को मानना जरूरी है, बाप का कहा मानना जरूरी नहीं है। ऐसे स्वतंत्रता ह्यूमन राइट्स आ गया आजकल है, क्या मानव अधिकार आ गया है, बाप को मानना है, लेकिन बाप के मानना स्वतंत्रता होना चाहिए, बस कोई अनुशासन न करे। देख लो, वेद को मानो, लेकिन वेद का कहना मानने की जरूरत नहीं है। तो यहां कहते हैं कि महाराज वेद ने वर्णाश्रम की व्यवस्था की है। वर्णाश्रम में पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चार वर्ण चार आश्रम, ये वेदानुशासन है। वेदानुशासन वेद ने व्यवस्था इस तरह मिलाई है मनुष्यों को। तो शंकराचार्य कहते हैं वटुर्वागे ही वा यतिरपि जटी वा तदितरो है? वटु यानी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कोई भी मनुष्य जब तक जीवन को चार भाग में बांटा है, वैदिक सनातन धर्म ने जीवन को चार भाग में बांटा, चार एक जीवन को चार भाग में जो बांटा है उस चार भाग का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। व्यक्ति यदि ये चारों आश्रमों को वैदिक विधि से दीक्षा पूर्वक आचरण करता है, अनुष्ठान करता है, तब जाकर वह वेदानुशासन को पूरा करता है। तो सामान्य आधार माना है 100 वर्ष की आयु। जीवेम शरदा सतम, शृणुयाम शरदा सतम, प्रभ्रवाम शरदा सतम, अधीन श्याम शरदा सतम, भूयश्च शरद सता। 100 शरद, 100 शरद माने शरद ऋतु, 100 शरद ऋतु, यही सर्व 100 वर्ष। तो 25 वर्ष का जो आधार है जीवन का वो प्राइमरी पीरियड है, और वेद के अनुशासन है कि 25 वर्ष तक तुम वाह एक से एक है भाई, हाँ एक से एक है, है? हाँ। तो 25 वर्ष तक वेद का अनुशासन कि केवल तुमको और किसी चीज की चिंता ही मत करो, केवल वेद अध्ययन करो। ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ होता है, ब्रह्म का दो अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी होता है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि वेद के कहे अनुसार समग्र आचरण करना, वो ब्रह्मचर्य है। वेदानुगामी, वेदानुशासन को आचरण में लेना ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म माने वेद, वेद अध्ययन के अलावा और दूसरा कोई चिंतन न करो, या परमात्मा के अलावा और कोई चिंतन न करो है? और उसके बाद जब तुम्हारा आधार मजबूत होगा, स्वाभाविक ही है, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी हो उतने नीचे उसको बेस देना पड़ता है, उसका फाउंडेशन उतने ही गहरा उतने ही मजबूत बनाना पड़ेगा। और क्योंकि जीवन का जो बेस है प्रारंभिक, वो यदि परिपुष्ट, परिपक्व, परिमार्जित और शुद्ध होगा तो ब्रह्मचर्य आश्रम में खड़ा हुआ हुआ बाकी गृहस्थ आश्रम वो भी परिमार्जित होगा, परिष्कृत होगा, वो शुद्ध होगा, उसमें विकार नहीं आएगा। तब फिर वानप्रस्थ और संन्यास इस तरह चलता रहेगा। बट उर्वागे ही वा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं जीवन का एक प्राथमिक क्षण, चाहे वटु का क्षण हो यानी ब्रह्मचर्य अवस्था हो, जीवन का द्वितीय जो चरण है गृहस्थी, ये ही चाहे वो गृहस्थाश्रम का हो, यतिरपि जटी, यहां थोड़ा व्यतिक्रम कर लेना, जटी को तीसरे क्रम में ले आना, यति को चौथे क्रम ले जाना। तो जटी अर्थात वानप्रस्थ आश्रम और यति अर्थात तुरीय आश्रम, चतुर्थ आश्रम। संस्कृत भाषा में चतुर्थ ये शब्द को तुरीय कहते हैं। बटुर्वाग्ये ही वा, देखो जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं प्राय करके बटु ही ज्यादा भगवान के भक्त दिख रहे हैं। इतिहास पढ़ लो, है ना, प्रहलाद गिरस्त होने के बाद भक्ति किया कि संन्यास लेने के बाद भक्ति किया भगवान की, या वानप्रस्थी होकर भक्ति किया, न गिरस्त होकर न संन्यासी न वानप्रस्थ। प्रहलाद की बात देख लो, बटु ब्रह्मचर्य आश्रम में ही भगवत भक्ति कर रहे हैं। ध्रुव की बात देख लो, संन्यास लेकर भगवान की भक्ति की या वानप्रस्थी होकर किया, बटुर। इसी तरह उपमन्यु को देख लो, क्या सन्यासी होकर भगवान की भक्ति की उन्होंने, बटुर। प्रथम क्षण में ही ब्रह्मचर्य आश्रम में ही भगवान की भक्ति की। ऐसे कई उदाहरण है, कई उदाहरण है। उद्धव को भी भगवान का भक्त ही मानते हैं, है ना, सख्य भक्त के अंतर्गत उद्धव का पहले नाम आता है। तो भक्तों में उद्धव सख्य भक्ति करने वाले हैं प्रधान। तब वो भी कोई गृहस्त होकर नहीं कर रहे, ब्रह्मचर्य में ही कर रहे हैं। अनेक उदाहरण, नचिकेता देख लो, कितने उदाहरण है, हैं? नारद जी देख लो, अनेक उदाहरण है। आज के नारद को कहते हैं कि तुम भी भक्ति कर लो, तो बोले अभी तो उम्र बाकी है महाराज, बुढ़ौती में करेंगे। कर लिया बुढ़ौती में।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: पर कई बार उससे भी बदनामी झेलनी पड़ती है, ऐसा होता है। एक बड़ा भारी विद्वान, बड़े अच्छे विद्वान थे, हमेशा वेदाध्ययन किया करते थे, गौशालाएं थी, गायें थी। उन्होंने एक ग्वाला को गाय चराने को लगा दिया। ग्वाला दूध निकाल के ब्राह्मणों को देकर गाय चराने के लिए ले जाता। एक दिन संजोग से उसी गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी रास्ते में पेड़ के नीचे बैठ के कुछ पाठ कर रहा था। इतने में क्या देखता है कि ग्वाला गाय को डंडे से प्रहार कर रहा। बेचारी गाय अपने बछड़े के वात्सल्य से गौशाला की तरफ आना चाह रही और वह बार बार डंडे से उसका मुख जंगल की तरफ कर रहा। ब्रह्मचारी को रहा दे गया। उसने ग्वाला को डांटा, उसके हाथ से लाठी छीन ली, कहा कि तू चले जा। वह चला गया और सीधे गुरुकुल आया और विद्वानों को कहा कि जो आपकी गायें हैं इनको मैं चराना चाहता हूं, क्योंकि ये ग्वाला जो है ना गौ माता को बड़ा प्रताड़ित करता है, ये मुझसे सहन नहीं होता है। मैं निस्वार्थ गौ माता की सेवा करूंगा, मुझे शुल्क भी नहीं चाहिए, बस केवल मुझे आप लोग भोजन दे देना। विद्वान ब्राह्मण बहुत खुश हो गए। हर दिन वह गायों को जंगल में ले जाता, चराता, खाज करता, पानी पिलाता। इसके बाद जब गायें बैठ जाती तो स्नान करके भगवान शंकर की पूजा करता। गाय इतनी प्रसन्न इससे रहती थी कि जरा सा गायों के पीठ पर खाज करता कि अपने आप गायें दूध देना शुरू कर देती। दूध भी बहुत होने लगा, ब्राह्मण और भी खुश हो गए। तीन चार वर्ष के बाद वही ग्वाला अवसर पा करके शिकायत किया कि वह जो ब्रह्मचारी गौ चराने गायों को ले आता है वह जंगल में दूध निकाल करके और उसका दुरुपयोग करता है, कुछ बेच देता है, कुछ शिवलिंग के पिंडी पैसे बहा देता है। ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया कि हमारे सामने तो बहुत भक्ति करता है कि मैं निस्वार्थ गौ माता की सेवा करूंगा, और उधर जो है दो नंबर काम शुरू कर दिया, दूध निकालता है और शिवलिंग के पिंडी पर डालता है, इधर उधर करता है। तुरंत ब्रह्मचारी के पिता को बुलाया और डांटा कि तुम्हारा बेटा बड़ा भारी अधर्म कर रहा, चोरी कर रहा, हमारे यहाँ भक्ति करता है, निस्वार्थ सेवा कर रहा, वहां जो है दूध निकाल करके सप्लाई करता है, मंदिरों में भेजता है, शिवलिंग की पूजा करता है। पिताजी ने कहा कि जरा हमें देखना चाहिए कि हकीकत क्या है। पिता जो है चुपके से पीछे पीछे जंगल में गया और एक पेड़ के ओट में छिपके देखने लगा कि क्या करता है। पिता ने देखा कि जब गायें जो है पानी पीकर आराम से बैठ जाती हैं, तो हमारा लड़का स्नान करता है, स्नान करने के बाद गायों को खड़ा करके खाज करता है और गाय पात्र में दूध अपने आप भर देती है। इसके बाद उस दूध को मंदिर में ले जा करके भगवान के पिंडी पर चढ़ाता है एक एक घड़ा। पिता को बहुत क्रोध आया, ये बड़ा जो है अनर्थ कर रहा है। तुरंत एक बड़ा भाई डंडा लाया और डंडा ला के सोचा कि मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, लड़का जवान है, सीधा मारूंगा तो कैसा न मुझे ही मार दे। सोचा कि पहले इसको बैठ जाने दो। जैसे ही वह ब्रह्मचारी दूध चढ़ाने के बाद स्तोत्र पाठ करके ध्यानस्थ हो गया, बैठ गया, सोचा कि अब इसकी खबर लेनी चाहिए। बड़ा भाई डंडा ले गया और चार पांच डंडे मार दिया, आंख खोला। पहले तो उसको आश्चर्य हुआ कि हमारे पूजा में विघ्न कौन खड़ा कर रहा। उसी डंडे से ऐसा प्रहार किया पिता के पैर पर कि पिताजी का पैर ही कट गया, बेहोश गिर पड़े। जब देखा तो उसके पिता, इसको बड़ा दुख हुआ कि हमारे पिताजी मैंने पहचाना नहीं, क्रोध में मार डाला। तुरंत भगवान शंकर वहां दर्शन देते हैं और उसके पिता को समझाते हैं कि देख ये हमारी प्रेरणा से सत्कर्म कर रहा था, तुझे भ्रम हो गया। तो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम दूसरे के कहने में आ जाते

की दुरस्थिति बन जाती है। इसलिए पुष्प दंताचार्य जी कहते कि वाम नटसी वामय विभूता, आपका तांडव नृत्य है जगत की रक्षा के लिए, परंतु विपरीत यहाँ पर अवस्था बन जाती है। तड़ी आघाते से तांडव बनाया, जैसे कि माता पिता बच्चे को डांटते हैं फटकारते हैं कि भाई तू पढ़ा कर, उस डांट फटकार के पीछे है बच्चे की सुरक्षा, हित कल्याण है, पर बालक समझ नहीं पाता है। छोटे बच्चे के जब कपड़े निकालती है माँ तो बच्चे रोने लग जाते हैं, उन्हें पता नहीं कि माँ नहा धुलाकर नया कपड़ा पहनाने जा रही है। हम लोग उससे भी अज्ञानी है ज्यादा। जैसे कि जब तक धान का छिलका नहीं निकालेंगे तब तक चावल नहीं निकलेगा, उस पर आघात करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर भी जो जीवात्मा के ऊपर ये आवरण है, अविद्या का, वासना का, कामना का, ये आसानी से जब नहीं छूटता है तो भगवान शंकर को तांडव करना पड़ता है। तांडव के आघात से ये पत्थर भी पिघल जाता है। जैसे पूज्य अखंडानंद महाराज का हम लोग कैसे सुन रहे थे ना, कि जिसके हृदय में भगवान के चरित्र के प्रति प्रीति नहीं है, स्नेह नहीं है, श्रद्धा नहीं, वह हृदय हृदय नहीं बल्कि पाषाण है। तो भगवान शंकर पाषाण को भी सीधा करने जानते हैं तो आघात करते हैं, और उसी आघात से ये जीव का जो ये पंच मल है ये मल छूटता है, और जब मल दूर होता है तब जाकर ये अपने स्वरूप की पहचानता है। तो तांडव नृत्य करने के बाद तब जाकर के ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। अब उसको भी देख ले, हम लोग उच्चारण कर लें।

जब उन मलों का नाश हो जाता है जो ज्ञान के प्रतिबंधक है, जैसे दीवाल बाहर के दृश्य दर्शन का प्रतिबंधक है। बाहर के दृश्य का दर्शन तभी हो सकता है जब दीवाल रूपी प्रतिबंधक हटे, या हम दीवाल को तोड़े या दीवाल के बाहर जाए, दो ही उपाय है। ऐसे ही ज्ञान का जो प्रतिबंधक मल विक्षेप आवरण है, वेदांत के अनुसार, सांख्य के अनुसार है कि प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान नहीं होना। सैवागम के अनुसार पंच ये जो मल है ये कारण है, आलो मल इत्यादि। इन प्रतिबंधकों को हटाने के लिए जब भगवान शंकर ने तांडव का आघात किया, उस आघात से जीवात्मा को पहले बहुत पीड़ा होती है। जैसे जब आप घर से यहाँ चलते हैं ना तो बहुत पीड़ा लगती होगी, लोग कहते भी होंगे कि ये प्रेमपुरी क्यों रोज रोज जाते हो, क्या तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, इतने दिन से जा रहे हो। लोग व्यंग भी करते हैं, ताना भी मारते हैं कि आराम से सोने भी नहीं देते, स्वयं सोते भी नहीं। अब आप मान लो छोटे से फ्लैट में है, 10 लोग रहते हो, यदि आपको प्रेमपुरी आना है तो 4 बजे उठना पड़ेगा। अब 4 की अलार्म की घंटी लगाएंगे तो बाजू वाले को तकलीफ होगी, घंटी बजेगी, परंतु आपको निश्चय है कि हमें पहुंचना ये 7:30 बजे, तो आप हर तरह की तकलीफ को सहन करके अपने मित्रों की बात भी सुनते हैं, घर वालों के भी सुनते हैं, क्योंकि उन्हें तो 8 बजे उठना है, आपको उठना है 4 बजे। व्यवहारिक जीवन में तो सारे लोग साथ देंगे, लेकिन नाच गान तमाशा देखने जाना

0: बोलेंगे हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। परंतु प्रेमपुरी आना हो, ज्ञान गंगा में स्नान करना हो, तो वहां सब कन्नी काट लेते हैं। यही आघात है। आप शारीरिक सामाजिक हर तरह की आघात को सहन करके उससे बड़ा है तकलीफ मन को मारना। ये मणिराम भी कई बार कहता है कि क्या करने, एक दिन ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो दिन ही जाएंगे तो क्या होगा। पर भोजन के लिए आप कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, एक दिन भोजन नहीं करेंगे, आज अच्छा शिवरात्रि का दिन है या नवरात्रि है, किस जन्माष्टमी है, रामनवमी है, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाए, कोई सोचता कभी? बिल्कुल ठीक टाइम पर होना चाहिए, नहीं होगा तो विक्षेप। स्वयं जो है भागवत में आता है, पीबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत के रस को कब तक पीना चाहिए, तो कह दिया आलयम। आलय मतलब कि लय पर्यंत, जब तक कि शरीर में प्राण है तब तक। और लय शब्द का दूसरा अर्थ है कि आत्यंतिक लय। लय जो है ना चार तरह से होता है, एक तो है नित्य, दूसरा है नैमित्तिक, और तीसरा है प्राकृतिक, और चौथा है आपका आत्यंतिक प्रलय। नित्य लय सुसुप्ति है, सुसुप्ति न आए तो आप जागृत का आनंद नहीं उठा सकते, कोई व्यवहार नहीं कर सकते। नित्य लय जो सुसुप्त है, इस लय में जाने के बाद जो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, तभी जाकर के हम लोग जागृत के व्यवहार को संपादित कर पाते हैं। दूसरा है आपका नैमित्तिक लय, ब्रह्मा जी के दिन रात्रि के कारण से लय होता है। तीसरा है प्राकृतिक लय, जिसमें कि समूचे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, यह प्राकृतिक। जो तीसरा आपका प्राकृतिक है, या जो दूसरा आपका नैमित्तिक है, इस लय के बाद भी संसार भाव की प्राप्ति होती है। जब तक कि हम आत्यंतिक प्रलय का अनुभव न कर लें। आत्यंतिक लय है मोक्ष, और यह होता है तत्व ज्ञान से। यदि तत्व ज्ञान हो गया तो हमेशा के लिए आनंद ही आनंद है। इसलिए कह दिया पिबत भागवतम रसमालयम। जब तक आत्यंतिक प्रलय का अनुभव न हो जाए, ये लोग घबराते हैं ना लय से। लय मतलब कि समझो कि आत्म विगलन, मैं का गलना, मैं का मरना, मैं का समाप्त होना, यही लय है। सुषुप्ति में मैं संपूर्ण रूप से विगलित हो जाता है। आप यह पता नहीं होता है कि मैं सोया हूं। यदि इतना भी ज्ञान हो कि मैं सोया हुआ हूं, तो भी सुसुप्ति नहीं आएगी। संपूर्ण रूप से अपने सीमित अहंता का, अभिमान का, मैं पने का विसर्जन ही सुसुप्ति है, वही आनंद है। पर यह जो है नित्य हो रहा है, प्रारब्धानुसार होता है। परंतु जो आत्यंतिक विलय है, हमेशा के लिए मैं का जो विसर्जन है, उसके विसर्जन से आप परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। तो तब तक भगवत संबंधी चर्चा सुनना सुनाना चाहिए। स्वामी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, कथयंतश्च माम नित्यम, तुष्यन्ति च रमन्ति च। संसार में रहते हुए भी किस प्रकार से हम आनंद का अनुभव करें, इस सूत्र दिया भगवान ने कि मच्चिता मदगत प्राणा। अपने चित्त को, प्राण मल्ल की कर्मेंद्रियों को, मुझ में समर्पित कर दो। और बोध्यंतः परस्परम, परस्पर उसी आत्मा की चर्चा करे, भगवान की लीला का चर्चा करे। इससे फायदा क्या होगा? लोग फायदा कहते हैं ना, फायदा क्या होगा? कोई भी काम करने के पहले सबसे पहले हम पूछते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि तुष्यन्ति च रमन्ति च, परम संतोष और परम आनंद की उपलब्धि होगी। हमारे पास अथाह धन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी संतोष नहीं होता है, क्योंकि संतोष का सूत्र है भगवत चर्चा। और इसको तब तक करना जब तक कि आत्यंतिक लय की अनुभूति न हो जाए, और जब तक अनुभूति न हो तब तक करते रहना चाहिए। बीच में छोड़ देंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जैसे मान लो आपको प्यास लगी है, कुआं खोदना है, थोड़ा यहां गड्ढा किया, थोड़ा वहां किया, थोड़ा यहां किया, जल निकलेगा कहीं से नहीं, बल्कि परिश्रम बेकार जाएगा। जब आप एक ही जगह तत्परता से खोदते जाएंगे तो निश्चित जल की प्राप्ति होगी। ऐसे हम लोग क्या सोचते हैं कि जरा जो रूप से आनंद आ जाए, रस से, गंध से, स्पर्श से, जरा दुनिया का भी आनंद ले लें, दुला इधर का भी, तो नहीं होगा। आप तत्परता से यदि कोई नियम लेते हैं भगवत चर्चा की, तब तो सफलता है। और यदि आप भगवत चर्चा नहीं करेंगे तो इसके व्यतिरिक्त दुनिया की चर्चा जबरन होगी। आप नहीं चाहेंगे तो भी होना ही होना है। आप कितना भी संकल्प कर लें, प्रतिज्ञा कर लें कि हमें अनात्म चर्चा नहीं करनी है, फिर भी होगी। आप करके देखना। आप कमरे बंद, कमरे में जो है दरवाजा खिड़की बंद करके, लाइट बंद करके बैठ जाना, ये मनी राम शुरू कर देगा। बहुत पुरानी पुरानी बातें जिसका कोई संबंध नहीं, और कई बार तो क्रोध भी आता है, कभी कभार हमें भी होता है, मतलब साल में दो चार दस बीस दिन होता है जब खाली होते हैं ना, तो जब सोचते हैं तो पुरानी से पुरानी बात याद आ जाती है। और क्या होता है कि हमें ऐसा उस समय कहना था, ऐसा करना था, जो बात बीत गई उसकी याद करने से क्या फायदा। पूज्य प्रातस्मरणीय खन्ना जी महाराज कहा करते हैं कि मनुष्य या तो भूत में चक्कर काटता है या भविष्य में, वर्तमान में तो बिरले होते हैं। भूत मतलब कि 20 वर्ष पहले ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, भविष्य मतलब कि आगे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये वर्तमान तो अपने हाथ से निकल रहा है। ये जो आज का तारीख है 6 दिसंबर है ना, 6 दिसंबर 2008, इसको कोई नहीं पकड़ रहा। कितने बढ़िया भगवत चर्चा हो रही है, ऊपर भागवत कथा कुछ जोधा जी की हो रही है, कुछ किसी को ध्यान नहीं, परंतु हम 10 वर्ष आगे की बात करते हैं। जिससे मैं न्याय प्रा करता था काशी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के न्याय विभाग के अध्यक्ष थे वशिष्ठ त्रिपाठी, ये बार बार कहा करते थे कि जहां पाठ चलता है ना वहां बुद्धि लगाओ तो समझ में आएगा। ये 2 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर पीछे लगाने से पंक्ति नहीं लगेगी। वो हमेशा जब क्रोध करते थे, डांटते थे, तो यही बोलते थे कि जहां पाठ चल रहा स्वाध्याय सत्संग, वहां दिमाग को लगाओ। और होता क्या है, विद्यार्थी का पीछे की बात याद करता है या 2 किलोमीटर आगे का, तो जो चल रहा वो भी निकल जाता है, वही हम करते हैं। इसलिए भगवान ने सावधान कर दिया कि तत्परता से करे और सातत्य न करे। भगवान पतंजलि जी ने योग दर्शन में लिखा है कि 3 वहां बात बताई, सातत्य, दीर्घ काल और नैरंतर्य। कोई भी काम सातत्य न हो और दीर्घ काल हो, आदर बुद्धि हो, तब जाके दृढ़ भूमि होगी, वह परिपक्व होगा। जैसे मान लीजिए सत्संग सुनते हैं तो सत्संग में भी दीर्घ काल हो, इसके बाद निरंतरता हो, और तीसरी कसौटी है आदर बुद्धि। आदर बुद्धि नहीं है तब भी बात समझ में नहीं आएगी। तो आदर मतलब श्रद्धा विश्वास हो, निरंतर हो, और इसके बाद दीर्घ काल, तब जाकर वह चीज परिपक्व होता है। आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं उसके लिए भी बड़ा हमें आदर करना पड़ता है, श्रद्धा रखना पड़ता है। किसी सेठ से मान लो पैसा निकलना हो तो कितनी श्रद्धा करनी पड़ती है, जीजाजुरी करनी पड़ती है, हर बात सहना पड़ता है। ऐसे ही ठंडी गर्मी बरसात या जो भी समाज की अव्यवस्था व्यवस्था है उसको भी झेलना पड़ता है, मन को भी संयमित करना पड़ता है, तब जाकर के भगवत चर्चा मन लगता है। देखिए संसार में दो ही चर्चा हो सकती है, आत्म चर्चा अनात्म चर्चा। अनात्म चर्चा करेंगे तो अनात्म चर्चा के पास जो है वही मिलेगा आपको। किसी सोनार के पास जाएंगे तो उसके पास सोने के आभूषण है, सोने के आभूषण उपलब्ध होंगे। और किसी पंसारी के पास जाएं तो उसके पास राशन पानी वही देगा। इसी तरह से अनात्मालय के पास दुख है, अनित्यत्व है, परिवर्तनशीलता है। तो अनात्म चर्चा करेंगे तो निश्चित ही दुख हासिल होगा, और आत्म चर्चा करेंगे तो आत्मा है सचित आनंद, उसकी उपलब्धि होगी। ऋषि केशविक ब्रह्म प्रकाश जी अच्छे संत हो गए, उनके पास कोई भी आए और जरा सा भी चर्चा करे तुरंत बोलते थे कमरे से बाहर चलो। सीधा उनका नियम था कि कोई गीता की चर्चा करे, उपनिषद का, भागवत का, तब तो घंटों बैठे रहे। पर जहां स्पीकर लगाया अपने घर का, बोले चलो यहां जरूरत नहीं, यहां मुझे सुनना नहीं। और अपने कैलाश के जो छठवें मनेसर हो गए ना, सौराष्ट्र के थे, विष्णु देवानी महाराज, उनका तो बड़ा कठोर नियम था मनेसर बनने के बाद भी कि कोई भी किसी की निंदा नहीं कर सकता। वे बोला करते थे कि कोई किसी की शिकायत करे, निंदा करे, तो 50% तो उस शिकायत करने वाले का दोष मैं मानता हूं, ऐसा बोलते थे। अब 50% है, 50 में से 25 तो हमारा है जो कि दुर्भाग्य से मैं सुन रहा हूं, इतना भागा। हम लोग सुबह सुबह बोलते ना, भद्रं करणे भी श्रुणियाम देवा, कानों से बढ़िया सुनना था, फालतू शिकायत निंदा चुगली सुन रहे। और 25% तो जिसके विषय में कह रहा वह पता नहीं है कि नहीं, संशयास्पद है, पर 75% तो कन्फर्म पक्का है। इसीलिए वो किसी भी शिकायत को सुनते नहीं थे। वो बोलते थे कि संसार त्रिगुणात्मक गुण दोष से बना है, परिपूर्ण केवल एक भगवान ही है, इंसान परिपूर्ण कभी हो नहीं सकता है। सब में कमोन बेसी गुण दोष रहते ही है, तो क्यों किसी का दोष सुनना, सुनना है तो गुण सुनो। यदि आप किसी का दोष बार बार सुनेंगे तो वह भी आपके अंदर आ जाता है, और किसी के लिए अच्छाई सुनेंगे तो अच्छाई आती है। इसलिए पूज्य बड़े महाराज उनको बोला करते थे, विष्णुदेवानी महाराज, उनका यह नियम था कि हमेशा आत्म चर्चा करना। इसी को भगवान ने कहा परस्परम बोधयंता, जब भी चर्चा करे तो आत्मा की चर्चा करे। जब आत्मा की चर्चा करेंगे तो जीवन हमारा अमृत में सराबोर हो जाएगा। और संसार की कथा करके आप लोगों ने अनुभव किया होगा भाई, शब्द गुण है आकाश का, न्याय दर्शन का सिद्धांत है, शब्द गुण कम आकाश, शब्द गुण है आकाश का। जैसे फूल में सुगंधी गुण है, जहां फूल होगा वहां सुगंधी पना होगा, तो आकाश व्यापक है तो आकाश का गुण भी व्यापक है। तो किसी के विषय में हम कितना भी छिपकर कुछ बात कहेंगे ना, तो निश्चित घूम फिर कर पहुंच जाएगा वहां, फिर खटपट शुरू हो जाएगा। इसीलिए किसी की अनात्म चर्चा ही नहीं करना। अच्छा आत्म चर्चा करेंगे तो चूंकि आत्मा भी व्यापक है, सर्वत्र आत्मा को समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं, आकाशवत व्यापक नित्यश्च। तो आत्मा विव्यापक है, आत्मा की चर्चा करेंगे तो निश्चित वहां से हमें सुख शांति की उपलब्धि होगी। अब चयन करना आपका है, साथ तो बदला दिया ना कि चाहे आप आत्म चर्चा करो चाहे अनात्म चर्चा करो। यदि आपको दुख चाहिए तो सीधा अनात्माले खुला हुआ है संसार, और सुख चाहिए तो सुनाम धन्य पंचम पीठाचार्य प्रेमपुरी जी महाराज ने आत्माले खोल दिया है प्रेमपुरी आश्रम। हमारे बीस भाई बोलते हैं ना हर दिन कि विश्व बने प्रेमपुरी। ये प्रेम जो है ना आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, स्वभाव है। तो हमें चुनाव करना है। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: वही उसे जान सकता जिसे वो जनवाता, लेकिन वो जनवाता कब है? जब रुचि, हमारा झुकाव उधर, हमारा झुकाव किधर है? इसलिए चाहे इस रूप में कहें या इसी को जो संकेत किया था कल, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराः संयतेन्द्रियः, संयतेन्द्रियः तत्पराः श्रद्धावान ज्ञानम लभते। कौन? तो कहा संयतेन्द्रियः और तत्पराः श्रद्धावान ज्ञानम लभते। संयतेन्द्रिय का मतलब क्या है? संयतेन्द्रिय, इंद्रियों का संयम, इतना सीधा अर्थ हो गया। इंद्रियों का संयम क्या है? इंद्रिय आंख है तो आंख को बंद करना ही क्या इंद्रिय का संयम? कान को बंद कर लेना क्या इंद्रिय, कानों का इंद्रिय रूप संयम? मुख को, वाणी को बंद कर लेना क्या इसका संयम? और आप जानते हो एक कथा भी आती है, महात्मा गांधी जी के पास में एक यूनानी दार्शनिक ने तीन बंदरों की मूर्ति बना करके हैं, और एक जो है आंखों पर हाथ रखे, कान पर हाथ रखे, एक मुख पर हाथ रखे, और ऐसा जो है, और उसने पत्र लिखा कि ये बताओ कि ये बंदर जो है क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं, आंख बंद करके ये क्या कहना चाहता है, और कान बंद करके ये क्या बतलाना चाहता है, मुख बंद करके ये क्या बतलाना चाहता। और गांधी जी ने भी उसका उत्तर दे दिया। गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? कि जो मुख बंद किए हैं वो कह रहा है कि मैं किसी की बुराई कहना नहीं चाहता, कान बंद किए हैं वो कहता है कि मैं किसी की बुराई को सुनना नहीं चाहता, और आंख बंद किए हुए है वो कहता मैं किसी की बुराई को देखना, ये कह दिया और उत्तर हो गया। लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाए तो ये उत्तर को वो समीचीन मानेंगे? वो कहेंगे उत्तर हो गया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये उत्तर अभी अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कि ये उत्तर जो है अभी अधूरा है। वही जब तक तुमने देखा ही नहीं तो कैसे पता चला कि ये बुरा है ये भला है? तुमने शब्द को सुना ही नहीं तो कैसे पता चलेगा ये शब्द मीठा है ये शब्द कड़वा है, ये शब्द बुराई करने वाला ये शब्द क्या है प्रशंसा करने वाला, पता कैसे चलेगा? और बाणी से बोल करके ही है तो पता लगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल ये तो अधूरा है, किंतु क्या करना है? इंद्रियों का संयम क्या है? भगवान ने क्या किया? इसलिए एक इंद्री नहीं दी, कहा एक फेल हो जाए तो दूसरी से काम ले लूं, है एक कान नहीं दिया दो कान दिए, एक है और ऐसे ही नासिका में भी दो छिद्र बनाए। तो भगवान ने एक की जगह दो दो, एक से काम चल सकता था, लेकिन एक एक न करके डबल डबल दिया कि कहीं पर एक में त्रुटि आ जाए तो दूसरे से काम निकाल लो। और क्यों? ऐसे बढ़िया साधन दे करके और क्या फल बतलाया? कि तुम सही ढंग से देख सको, सही ढंग से सुन सको, सही ढंग से निर्वचन कर सको, और इसके लिए अंतःकरण आदि भी सब दे दिए। किस लिए दिए? कहा कि कहीं पर भी तुम भ्रमित न हो जाओ, कहीं भटक न जाओ, इसलिए सुंदर साधन दे दिए। लेकिन वो सुंदर साधन किस लिए? ये विशेषता मनुष्य की ही है, इसलिए मनुष्य के अंदर ही दुर्लभता बतलाई, क्योंकि मनुष्य ही देख करके वस्तु का परीक्षण कर सकता है, सुन करके परीक्षण कर सकता है, और परीक्षण करके क्या सत्य है क्या असत्य है इसका निर्णय ले सकते, क्या हमारे लिए श्रेयस्कर है और क्या हमारे लिए प्रिय मात्र है। इसलिए श्रुति ने कहा भी, क्या कहा? मनुष्य के लिए ही कहा। ये कहने लगे श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेत तौ संपरीत विविनत्य धीरः। लेकिन संकेत कर दिया, समस्या क्या है? कहने लगे दो चीजें इस मनुष्य के लिए हैं, दो मार्ग हैं, चाहे इस मार्ग पर चला जाए चाहे इस पर चला जाए, लेकिन दोनों मार्गों में जाने से पहले करना क्या है? यदि कल्याण चाहता है तो उसे विचार करना होगा, देखना होगा, परीक्षण करना होगा, और यह सामर्थ्य परीक्षण की किसमें है? मानव। और परीक्षण करे, लेकिन परीक्षण भी कौन कर पाएगा? जिसकी रुचि हो, और रुचि के साथ साथ में फिर रुचि के साथ साथ जोड़ दिया कि धैर्य भी हो। जब तक जीवन में धैर्य नहीं होगा, धैर्यशाली व्यक्ति ही परीक्षण करते हुए सफल होता है, और जो धैर्यशाली नहीं है वो परीक्षण करके भी असफल ही हो जाता। तो परीक्षण करने के लिए सुंदर साधन भी दे दिए और कहा कि तुम परीक्षण करने में समर्थ हो, और परीक्षण करके धैर्य पूर्वक जो है अपने मार्ग का निर्णय ले लो। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतः तौ संपरीत विविनत्य धीरः। फिर रुचि अपनी लगाओ, पहले निर्णय ले लो, और निर्णय लेकर के फिर अपनी रुचि उसमें लगाओ, और वही रुचि तुम्हारी श्रद्धा बन जाएगी, श्रद्धा बन जाएगी तो उसकी तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। ये तात्पर्य है। अब जो है संकेत किया कि परीक्षा, तो परीक्षलोकान कर्मचितान, ये सब संकेत वहां भी कर दिया और यहां पर भी कह रहे, तो परीक्षण करना। अब मोटी भाषा में ले लो, किसी व्यक्ति को शुगर हो गया। शुगर क्या है? एक प्रकार रोग है, लेकिन शुगर रोग ही नहीं है। रोग क्यों कहा उसे? रोग इसलिए कहा कि हमारा जो रक्त है उस रक्त में शुगर विद्यमान है, और वह जो शुगर जो है वो हमारे अवयवों के लिए उपयोगी है, लेकिन वह रक्त क्या कर रहा है? वो हमारे अंगों में, हमारे अवयवों में, हमारी मांसपेशियों में, हमारे मस्तिष्क में उस चीनी को पहुंचाने में वह रक्त समर्थ नहीं। ध्यान देना, वह रक्त उस चीनी को हमारी मांसपेशियों, हमारे अंगों में, अवयवों में पहुंचाने में असमर्थ हो गया, यही है शुगर रोग। लेकिन प्रत्येक अंग को उस चीनी की आवश्यकता है, उस तत्व की आवश्यकता है, और वो रक्त के सर्कल के द्वारा ही जो है वो प्राप्त होती, लेकिन रक्त में ये असमर्थता आ गई, उसे पहुंचा पाता नहीं, तो क्या कह दिया? यही रोग कह दिया। अब जब जो है जिसको शुगर रोग होता है, तो उस शुगर रोगी को क्या होता? मीठा खाने की बड़ी रुचि होती है, इच्छा होती। अब जो है मीठा सामने आता, पार्टी में गया, किसी फंक्शन में पहुंचा, अब है तो शुगर, डॉक्टर ने तो कह दिया कि भैया आपको चीनी बिल्कुल नहीं खानी, कड़वे करेले जो है ना, कड़वे करेले खाने। ओ, देखता है तो पानी आ जाता मुंह में, तो सोचता है क्या, चलो आज खा लेते हैं, एक इंसुलिन और ले लेंगे, हैं? और खा लेता। अब ये क्या हुआ? प्रिय क्या है? जो वस्तु हमें प्रिय लगती है, प्रिय शब्द का ही प्रिय शब्द बना, तुलनात्मक अर्थ बतलाने, जो वस्तु हमें अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, वो हो गया प्रिय। और जो वस्तु हमारे लिए प्रशस्त है, कल्याणकारी है, वो हो गया श्रेय। अब वहां पर जब सामने ऐसी स्थिति आई, उसने देखा तो अब जो है देख रहा है और उसके गुणधर्मों को जान भी रहा है। ये मनुष्य के अंतर्गत है, ये सब दिया उसे, लेकिन कर क्या रहा है, उसके अंदर धैर्यता है कि नहीं। श्रेय और प्रेय का निर्णय लेना, दो मार्ग है उसके जीवन। लेकिन यदि वह केवल अच्छा लगता है मीठा, और इसलिए जो है चलो एक इंसुलिन और ले लेंगे और लेके खा लेता है, तो क्या होगा, कष्ट को प्राप्त होगा, उसे आगे क्या होगा, कष्ट मिलेगा। लेकिन वो उसने निर्णय ले लिया, धैर्य है उसके अंदर कि ये जो है, यदि हम शुगर को खाते हैं, इसका मीठा को खाते हैं, तो हमारी शुगर बढ़ जाएगी, और शुगर बढ़ जाएगी तो हमें कष्ट होगा, इसलिए ये हमारे लिए उपादेय नहीं। तब क्या करता, तो वो चयन करता है करेले की सब्जी उठा के खाता, कड़ुए को खाता, क्योंकि वो जानता है कि इसके अंतर्गत प्रशस्तता है, श्रेयता है, ये हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद है और ये हमारे लिए हानिकारक। तो किसका अनुपण करेगा, तो करेले के, और अच्छी लगने के कारण यदि खा ली तो प्रेय का वर्णन हो गया। किसका वर्णन हुआ, प्रेय का। केवल अच्छी वस्तु लगती है इसलिए मैं ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन वो वस्तु क्या हानि करेगी, क्या लाभ करेगी, और ये विचार यदि नहीं किया तो वही अधैर्य हो गया। तो ऐसे ही ये तो उदाहरण, मनुष्य के जीवन में भी दो मार्ग। अब यद्यपि एक विचार और करना, वह उस मीठे को खा करके भी करना चाहता था, अपने को सुखी करना चाहता, लेकिन जानता है कि इस सुख को हम प्राप्त करेंगे, क्षणिक सुख तो मिलेगा, जीवा का सुख तो मिल जाएगा, लेकिन फिर बाद में कष्ट मिलेगा, ये जानता है। तो अब सुख की कामना से ही कर रहा, और वैसे ही मूल में जो बात कही थी, वेद भी उसी को कहता, प्राणी मात्र क्या है, तो अमृत।